कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 26। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता दीनयोग। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ, भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप बताने डाले न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए टागिन डायरेक्ट न्यूज। सात बज के 7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

0: राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे पेश है कृष्ण भक्ति गीत तेलियांग ज्यूज और उनके साथियों की आवाजों में।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर कार्यालय एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोता का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर हिलोपोल चामनीगो लोक तारीक लुगो आरसो गो सिर गलो मिंके नागुम मेनेंजीर मिंके नागुम मेन्जी नंगो मारबम जिर दो केनलोग के ई पानर डिस्ट्रिक्ट लो सिबुग राचग मोको माजिब मोलुक नम काला मदिक आगोम गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती परनायक मेनलुक दूला निसिलुक कुन याजियालो लगाब कुमलुक जोलुक दूला इजालोब नी मापाको कम्ब कुमा नाम गद्दम आयन बुपु लकप दोब मापा मोला का अमला मेक आगोम मेनला कुमलुक जोलुक चितातु ओके सिबुग राचक दीदी राचक हृदय को मोकोलो धूल कर लुक न नी गद्दम सक न लोम नाम सी नाम पुदे कोलकम लालन कु नाम लगाब नरु ल मोला रतोका अमला नरु डिपार्टमेंट गद्दम गवर्नर भी मेंगाब लुकतु ओके स्टेट मशीनरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ओके बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ गद्दम भाकेन गोब अगेरम रिबाम दूला बदू बदाम आल्डो ब्रिगतोका अमला गवर्नर भी मेंतातु केन लोग सिबुक रचक रिकोलो बदू बदाम इंदे के देखो काकुमाब रचक तुयक जी नाम लगाब जीरो लो तुमल अकुनम उरुगोला अप्पी टूरिस्ट गोनम हेलीकॉप्टर लोक नहालगन गलो तू कु अमला चीफ मिनिस्टर पेमा कांदुब मेंकेन जितु दापोरी जोलो चीन उरुगोला अकेन टूरिस्ट गो ओक चीनराम ने निदुम अकेन गो हेलीकॉप्टर लोक गलेंदो बलमो गदू अमला सीएम भी मेंकेन जितातु सोगो इंडियन एयरपोर्ट्स ओक स्टेट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट लोक हेलीकॉप्टर सोर्टीस पिंगोगो आगे रिने नादु अमला खांडू भी मेंकेन जितातु ओक पोसा ब्रिज दो को अमला मोको आकेन गोनेलो बदात रचक तुतुमला अनामम गारी गुरा इनबिक दो कुब मोको ग्रिकोक जिगे कुबा अमला सीएम भी मेंकेन जितातु ओके सिबुक रचक रिकोलो नी मापा कुमा नाम गद्दम मालेन रिलेन अगेर सार्चेन रेस्क्यू ऑपरेशन अलरूब रिबे गदूना अमला ब मेंकेन जितातु के ई पानर डिस्ट्रिक्ट लो सिबुक रचक ग मोलुक को मोको गद्दम मेरो 16th याचुली एमएलए तोको तातुंग ब हेलीकॉप्टर लोक इंगोला एरियल सर्वे रिला कागो तागो दूला उकादार काम रिगतोरेला माजिब मोलुक को मोको गद्दम कोदेलो के बु आ इंगोला उका दारकाम रुगका ओक माजिब मोलुक नाम नी गद्दम बु कारक तारिक सिला आल रूप आगोम तारिक कारक सितु सोगो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओके लोकल लीडर्स गद्द एमएलए ग इंकोलो इमिंगतु पापुमपारे ओके के ई पान्योर डिस्ट्रिक्ट केनलोक सिबुक रचक रिकोलो माजिब मोलुक को मोको गादिलो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रिग को मोको गादिलो ड्रोन ओके कब कब अनमेंड एरियल व्हीकल्स यूएवीस गद्दम देमो माधोब अमला सिम गादिसिम रितुम मेंतुम जाबक तोका अमला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट पापुमपारे और दारगो जिलेंजिका रेस्क्यू ऑपरेशन रिकोलो हेलीकॉप्टर इंदु इन तोकोलो सिख ड्रोन गादिसी अजिक आकरादे दो अम्दूला सिम और दार सिम डिप्टी कमिश्नर काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोपसंग सेरिंग भी जिलेंजितु सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सागाली किमिन ओके बालीजान लोक एडीसी गद्दम

ओके दोई मुख एस दियो बुन्नम सिम ऑर्डर सिम दिनचिब काग तागला रिलुग तो का अमला दीसीब मेंगा ब्लुकता तू नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल 2025-26 ईटानगर का जोलांग लोक अरुणादय यूनिवर्सिटी लो रुग को लो तु अलोलो मेरो एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोनाब पुलुग जिदुला सिगिम ऑफिसियली ब मोकोग्रिकोकम रिजिका ओके लाइन मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट कब कब कल्चर रिमिन मेमिन गनाम ओके आया खालु मिन सिला रेबाम दुबाम नाम ग दिनचिनाम आबाम यूट गद मिनिस्टर ब मेंकेन जितु ओके नॉर्थ ईस्ट इंडिया सोक अदक अदक कल्चर एंड ट्रेडिशनम आबाम ट्रेडिशन आबाम मान इज्जत अमीन सिदु ला बाकेन ब रेबाम दुबाम तो काम ला एनएसएस वॉलंटियर्स का दम ब मेंतातु ओके गुदु सिगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनएसएस रीजनल डायरेक्टोरेट गुवाहाटी अरुणोदय यूनिवर्सिटी ईटानगर ओके एनएसएस सेल डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश एम बाकेन दोला रिगन्यादु सोगो नॉर्थ ईस्ट इंडिया सोक पीनु स्टेट गादिलोक 320 एनएसएस वॉलंटियर्स ओक प्रोग्राम ऑफिसर्स गोब पुकुम सिलासिम लोदुम न्यादु तान गादनुन गालो मेंके नागुम सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादु इंटेंसिफाइज पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन प्रोग्राम सिम रुगनम मेंग नाम लगाब मेरो अपर सुबनसिरी ग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चैम्बर लो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम गो रिगन्या का सोगो पोलियो जिदागलो रिग मेंग से अबाम अभागदम अलरू परजू सिन्या का ओके याद गो पगला रदि हकना गो पोलियो सिगिम जिला दो ब रिग मेंग से अभागदम कबादू ने गद परजू सिन्या तू अरुणाचल प्रदेश के उरुगोला अक्क डिस्ट्रिक्ट गोनेलो अचिरूप दोगुम दोरिला फ्यूतरूप निदो ओते दो एमला मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर मेन्नो जिदूला सिम डिस्ट्रिक्ट गद सिम येलो अलर्ट जोन गोबे मेनलेन जितु के सिरिग गलोमिंग के नागोमे एगे

दोस्तों खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक नई ताजगी, एक नई उम्मीद और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू और इस खूबसूरत सुबह का हमसफर लेकर हाजिर हूं आपका खास पसंदीदा एनर्जेटिक और सेहत से बड़ा कार्यक्रम सुबह सवेरे। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी खाया, यानी अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा में जब पहाड़ों पर धुंध हल्की हो रही है तब बिस्तर से उठने का मजा ही कुछ और है। लेकिन सच सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले किस किसने अपना मोबाइल चेक किया, व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस देखने से पहले अपनी बॉडी को एक बार गुड मॉर्निंग बोलना जरूर है। दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बिजी लाइफ को थोड़ा और हेल्दी बना सकते हैं। हम बात करेंगे हमारी सदियों पुरानी परंपरा यानी योगा के बारे में, थोड़ी मजेदार एक्सरसाइज की बातें होंगी और ढेर सारे काम की हेल्थ टिप्स भी मिलेंगी। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद हसीन गाने के साथ। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं अभी होती हूं हाजिर।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर सुबह सवेरे। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं तो एक शब्द हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है और वो है योगा। लेकिन क्या आपको पता है कि योगा का कोई चीज नहीं है जो पिछले कुछ सालों में अचानक से फेमस हो गई। इसका इतिहास बेहद गौरवशाली और हजारों साल पुराना है। हमारे देश भारत में लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी योगा के सबूत मिले हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेदा और उपनिषद में इसका गहरा जिक्र किया है। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में एक बहुत सुंदर बात कही है, स्थिरा सुखम आसनम, यानी जो आसन आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी और सुख दे वही असली योगा है। योगा का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं होता। योगा शब्द संस्कृत के युज से भाषा है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, यानी आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपके सोल का एक साथ जुड़ जाना। अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो डरना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटी और आसान होनी चाहिए। आज से ही आप ये तीन चीजें शुरू कर सकते हैं। पहला है अनुलोम विलोम और कपालभाति। सुबह उठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा और दिमाग से सारे स्ट्रेस को धूल की तरह उड़ा देगा। दूसरा है वृक्षासना। अगर आपका दिमाग भटकता है या घर में बच्चों का काम में मन नहीं लगता या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाना सीखिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को कूल करता है और फोकस बढ़ाता है। तीसरा है बालासना। दिन भर की बागडोर से अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है तो बालासना कीजिए। इससे स्पाइनल कोर्ड को बहुत आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात, योगा हमेशा खाली पेट कीजिए। अगर सुबह कुछ खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर करें। योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए चमत्कार। चलिए इस पीसफुल ज्ञान के बाद बॉडी के एनर्जेटिक मोड को ऑन करते हैं ये अगले गीत के साथ।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

दोस्तों, रेडियो की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। योगा से हमने माइंड को शांत कर लिया, अब बारी है बॉडी के मसल्स को एक्टिव करने की, यानी एक्सरसाइज की। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना जरूरी है या भारी भारी डंबल्स उठाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम ईटानगर के लोग तो वैसे ही इतने हसीन पहाड़ों के बीच रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ही हमारी जिम है। सबसे पहले आप कर सकते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग, यानी सीढ़ियां चढ़ना। ऑफिस या घर पे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ने की आदत डाल लें। यह आपके थाई मसल्स और हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। दूसरा है ब्रिस्क वॉकिंग। सुबह सुबह तेज कदमों से चलना सबसे बेस्ट है। अगर आप रोज सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा में 20 से 30 मिनट तेज चलते हैं तो आपका दिल हमेशा जवान रहेगा। तीसरा है प्लैंक। अगर वॉक पर जाने का वक्त नहीं है तो घर पर ही एक मिनट के लिए प्लैंक पोजीशन में रहिए। ये आपकी बेली फैट को कम करने और कोर बॉडी को रॉक सॉलिड बनाने के लिए किंग एक्सरसाइज है। चौथा है स्ट्रेचिंग रूटीन। एक बात याद रखें, बेड से उठते ही झट से एक्सरसाइज मत शुरू कीजिए। पहले अपने बॉडी का आलस भगाने के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट ट्विस्ट कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी ही खुश रहोगे। तो आलस छोड़िए और थोड़ा सा पसीना बहाइए। चलिए आपकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए प्ले करते हैं आज का तीसरा गाना।

दोस्तों, योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, अब बात करते हैं उन छोटी छोटी हेल्थ टिप्स की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा और आज से ही फॉलो कीजिएगा। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने के पहले कम से कम एक या दो ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर फास्ट बना देता है। हम जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि खाने को इतना चबाओ कि वो पेट में जाने से पहले पानी बन जाए। कम से कम 32 बार चबा कर खाइए, एसिडिटी और गैस हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तीसरा है, हमारे सुबह का नाश्ता सबसे हैवी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आपके अपने ब्रेकफास्ट में लोकल फ्रेश फूड्स, उबले हुए अंडे या स्प्राउट्स जरूर शामिल करें। नाश्ता कभी स्किप मत कीजिएगा। चौथा है, द व्हाइट पॉइजन चेक। अपने डाइट में से 3 सफेद चीजों को थोड़ा कम कीजिए, सफेद नमक, सफेद चीनी और मैदा। इनकी जगह सेंधा नमक और गुड़ का इस्तेमाल शुरू कीजिए। पांचवा है, जल्दी डिनर करना और गहरी नींद लेना। कोशिश करिए कि आपका डिनर रात को 8 बजे से पहले हो जाए। और हाँ, सोने से आधा घंटा पहले अपना फोन स्विच ऑफ या साइलेंट जरूर कर दे, ताकि आपको 60 घंटे की

सुकून वाली नींद मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे का आज का सफर बस यही तक था। उम्मीद करती हूं कि आज की बातें आपके काम में आएंगी और आप आज का दिन पूरी एनर्जी और अच्छी सेहत के साथ बिताएंगे। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे पहला घर है, इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब मुझे यानी अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर पर गाने और काम की बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अपतने दालेक में हमारा न्यूज बुलेटिन आकाशवाणी ईटानगर पर आप सभी का स्वागत है। और अब वक्त हो चला है हमारे स्पेशल मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का, एक ऐसी खूबसूरत सुबह जो आपको रखेगी हर खबर से अपडेट और साथ ही आपके दिन को बनाएगी म्यूजिकल। आज की तारीख है 26 जून 2024। आइए सबसे पहले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और देखते हैं कि आज की हिस्ट्री में ग्लोबल लेवल पर क्या बड़ी घटनाएं हुई थी।

यूएन चार्टर साइनिंग 1945, आज ही के दिन सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन चार्टर पर साइन किया था। इसका मकसद था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में शांति बनाना। इसी चार्टर के बाद ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की स्थापना हुई थी, जो आज पूरी दुनिया को जोड़ता है। जॉन एफ कैनेडीज बर्लिन स्पीच 1963। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने वेस्ट बर्लिन में एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने पूरे जर्मनी का हौसला बढ़ाने के लिए जर्मन भाषा में कहा था, इच बिन इन बर्लिनर, यानी मैं एक बर्लिन का नागरिक हूं। उनका ये एक सेंटेंस इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तीसरा है फर्स्ट बारकोट्स के 1974। दोस्तों, आज हम हर मर्तबा शॉपिंग करते वक्त जो बारकोड स्कैन देखते हैं, उसकी शुरुआत आज ही के दिन ओहायो के एक सुपरमार्केट में हुई थी। दुनिया में सबसे पहली बार जिस चीज पर बारकोड स्कैन किया गया था वो एक रिग्लीज जूसी फ्रूट च्यूइंग गम का पैकेट था। आज ही के दिन 1997 में ब्रिटिश ऑथर जेके रॉलिंग की पहली किताब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स पब्लिश हुई थी। शुरुआत में इस किताब को बहुत सारे पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब यह मार्केट में आई तो इसने पूरी दुनिया के बच्चों और बड़ों पर जादू चला दिया और एक बड़ा इतिहास रच दिया। सोचो दोस्तों, अगर आज बारकोड ना होता तो सुपरमार्केट्स में कितनी लंबी लाइन लगती, और अगर हैरी पॉटर ना होता तो हम सबका बचपन कितना अधूरा रहता। सच में इन इवेंट्स ने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया। चलिए इसी के साथ सुनते हैं हमारे सुबह का पहला गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर पर हमारा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट सेगमेंट। ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब आइए देखते हैं हमारे भारत के इतिहास में आज 26 जून का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण और यादगार माना जाता है। भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज का दिन सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय आज ही के सुबह पूरे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाई गई थी, जो अगले 21 महीनों तक चली थी। इस दौरान लोगों के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे। क्रिकेट लवर्स के लिए आज का दिन यानी 1983 में एक फेस्टिवल से कम नहीं है। कपिल देव की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर पावरफुल वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट जीता था। इस एक जीत ने भारत में क्रिकेट को एक नया धर्म बना दिया।

भारत ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आज ही के दिन 2004 में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इंडिया ने अपनी परमाणु कैपेबिलिटी वाली अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया था, जिसने हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। आज ही के दिन को देशभर में और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। हमारे यूथ को ड्रग से दूर रखने और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आज पूरे देश में अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। 1983 का वो कपिल देव का ट्रॉफी उठाना और भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। और दोस्तों, ड्रग्स के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है ताकि हमारा अरुणाचल और हमारा देश हमेशा स्वस्थ रहे। इसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना।

दोस्तों, वक्त है हमारे स्टेट की सबसे बड़ी और अहम खबरों पर डिटेल में नजर डालने का, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम अरुणाचल टाइम्स में छपी है। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी हेडलाइंस। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, रेस्क्यू रेस्टोरेशन अप्स अंडरवे इन कई पन्योर। हैवी मॉनसून और क्लाउड बर्स की वजह से हमारा नए बने डिस्ट्रिक्ट कई पन्योर के यजाली डिस्ट्रिक्ट, खासकर नेपको प्रोजेक्ट कॉलोनी के पास फ्लैश फ्लड और मैसिव लैंडस्लाइड ने भयानक तबाही मचाई है। डेब्रीज और मलबे की वजह से रास्ते पूरी तरह बंद है और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इंट्रा सर्कल रोमिंग एक्टिव कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम्स वहां वॉर फुटिंग यानी बहुत तेजी से रेस्क्यू और रेस्टोरेशन के काम में जुटी हुई है। कम्यूटर्स को उन इफेक्टेड रूट्स पर ट्रैवल ना करने की हिदायत दी गई है। सिटीजन्स टेक आउट मार्च अगेंस्ट स्मार्ट मीटर्स। कैपिटल रीजन में रहने वाले सिटीजन्स ने स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के खिलाफ एक बड़ा क्रोध प्रदर्शन और मार्च निकाला है। उनका आरोप है कि जब से ये नए स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल हुए हैं, उनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल बिना किसी बढ़ाव के अचानक डबल या ट्रिपल आ रहा है। सिटीजन्स ने एडमिनिस्ट्रेशन और पावर डिपार्टमेंट से मांग की है कि इस बिलिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक इस पर रोक लगाई जाए। FIR registered against student bodies for extortion, obstruction of work, state

0: नेचुरल फार्मिंग, सॉयल हेल्थ और फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर और लखपति दीदी के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई बल्कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और ग्रीवेंसेस का निवारण भी किया गया, जिससे सैकड़ों लोकल लोगों को सीधा फायदा पहुंचा। दोस्तों, मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने सरुंगुल गताहिन प्रोग्राम मखोगी ले यूनिंग अबिन टाइम गे ने सी राजीव राय। अरुणाचल प्रदेश के कई पानी और डिस्ट्रिक्ट लो के लोग याजाली ने चीलो नेपको कॉलोनी लो ने दो अच्छा लब ओला दिदरा चद दरलू को कुनाम लो नी अकु सिपुकुला बेफादुकु ओकनी आप गुने गुनी सिजेलु दब कापामा दे दोला विफादुकु सो ग सुविधा चित ग कॉलोनीलो दरलगला कोलो नी रिंगुला अक्कन गु उने तरे ग लारे पुकुला विफादुकु सो सिकुने नी सि अंगसि अनिंग चम चोम गुला जंगु कुने निर्मला गुप्ता नाम गु सि स्कूल टीचर गुबा रिपेला विफादुकु नेपको के हेड ऑफ द प्रोजेक्ट लोक बिंपाकु नाम गे सो उन तरे गने दे दलो नी मात्रा लब उन तरे गने दे दंगा जीरो हॉस्पिटल लो गलगला ने ने दोबाई गा मगे दो कुला बिंपा दो को पिताफुल लो लम्दा गा दिदरा चित गे दर्तुम नाम लकिंग बे मेडिकल केयर लखंग जीरो या ब ग कुचानाम ग केला मे पालिन दोकु सो अरालो स्टेट लो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लोक बे फाखुनाम ग सो ग सर्च चक रेस्क्यू ऑपरेशन ग सजेल द ब मबंग दोकुनेला मे फा दोकु अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी फरनाइक कई पानी और डिस्ट्रिक्ट लो दिदरा चत अंगला नी सिनाम या नाम सम मंगदक दुकुने ओके ओंगने तरगे ने ददना का मंगदक मंगे दुकुने ला मिफाल इन दुकु गवर्नर ने मी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाला डिपार्टमेंट दे दंगा मिफाकुनाउंगा सोग मॉनसून सीजन सो चिरियाल दुनिया केला मिफा दुकु ओक फ्लड फ्रॉन लैंडस्लाइड फ्रॉन एरिया लो दुन दकने द सम का एडवाइजरी लो मिफा तक केला मिफा द दुकु अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मयो मिफा खुनाम ग लोअर सुबनसिरी जीरो लो टूरिस्ट नी एरिंगुला आपिगुब अन्यु चान्यु कुमाब दोंनामगा जीरो लोक नहर लगुन लो एयरलिप ला रितुकुबेला मिफालु लिंदुकु टूरिस्ट एरिंगुला अकेन गुका गुला लेमानि अकुनि दापुरी जो लोक गेलग मोतुकुबेला मिफादे दुकु सो इंडियन एयरफोर्स गला सिविल एविएशन डिपार्टमेंट लेकिन गुब रिभाम दुकुला स्टेट लो हेलीकॉप्टर नंगुगु जतों जरंग मोला नी मनंगा गखुर गरक मोला रिग दुकुनेला मिफालिन दुकु सो अरालो दिदराचित अंकुमो ददलो नी आपिगुब नी नाम सोमका सजेल देव कापामादु सोम रेस्क्यू कर ऑपरेशन गा रिंगोल फाग दुखुने ला मे फादर दुखु 16 याचुली लो एमएलए तोको तातोंग मयो कई पानियो डिस्ट्रिक्ट लो दिदिराचित अंकुमोंगा हेलीकॉप्टर लो जा करला का करला रिगनि कुबेला मे फादर को तोको तातोंग ने मी हेलीकॉप्टर सर्वेगा ममी गई कुला सुबिग्राच अंकुमोंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाला लोकल लीडर दे दंगा लेकिन गोब अंगबाम दोकुला लफालो अंकरला का कर गंज कुबेला मिफाल।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तगिन दैलिक में हमारा न्यूज बुलेटिन आकाशवाणी ईटानगर पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके आरजे याजू और अब वक्त हो चला है एक ऐसे सफर का जो हमें हमेशा से आपके दिल के बेहद करीब रहा है। जी हां, हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार। एक ऐसी प्रोग्राम जहां पुराने गाने गुनगुनाएंगे, यादों के सिलसिले चलेंगे और साथ ही हम जानेंगे हमारे हसीन स्टेट के मौसम का हाल। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे हमेशा जिंदा रहने वाले सदाबहार गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार आकाशवाणी ईटानगर पर। और दोस्तों, गाने के इस मदहोश धुन के साथ अब थोड़ा बाहर खिड़की से झांककर देखें तो क्या बात है। इस वक्त हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर में बादलों को चीर कर एकदम मस्त सनलाइट यानी तेज धूप खिली हुई है। सुबह सुबह की इस धूप ने दोपहर को थोड़ा गर्म जरूर बना दिया है, लेकिन दोस्तों मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर के ऑफिशियल बुलेटिन के माने तो इस सुहानी धूप से धोखा मत खाइएगा। धूप की वजह से फिलहाल ईटानगर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच महसूस हो रहा है और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी उमस हो सकती है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि पिछले 24 घंटे में यहां अच्छी बारिश हुई है और आज का फोरकास्ट जनरली क्लाउडी स्काई विथ स्पेल्स ऑफ रेन है। इसका मतलब है कि ये धूप आप देख रहे हैं, जो धूप आप देख रहे हो यह अचानक गायब हो सकती है और दोपहर या शाम तक तेज गरज के साथ हैवी थंडरस्टॉर्म और बौछारें गिर सकती है। आज का मिनिमम टेम्परेचर रात को 24 डिग्री सेल्सियस तक डिप करेगा। तो दोस्तों, अभी तो धूप का मजा ले लीजिए और अगर कोई जरूरी काम है तो निपटा लीजिए, लेकिन अगर बाद में घर से निकल रहे हैं तो छाता और रेनकोट साथ रखना मत भूलना, क्योंकि मानसून का मौसम है, कब करवट बदल जाएगा पता ही नहीं चलता। चलिए, ऐसी खुली धूप और सुहाने दिन के नाम सुनते हैं हमारा अगला नगमा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और हमारा सिलसिला चल रहा है सदाबहार का। ईटानगर के मौसम के बाद अब बात करते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के मौसम की, क्योंकि मॉनसून पूरे नॉर्थ ईस्ट में फुली एक्टिव हो चुका है। आईएमडी के मुताबिक आज पूरे अरुणाचल प्रदेश में वाइडस्प्रेड टू फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश का अनुमान है। इसका मतलब है कि स्टेट के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे बड़े रूप में बादल बरस रहे हैं। स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट खासकर लो लाइंग और हिली बॉर्डर लाइंस पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। इस मॉनसून बर्स की वजह से कुछ हिस्सों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लोज का खतरा बना हुआ है। बारिश के साथ साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर अचानक से थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग यानी तेज गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने सभी नागरिकों को हिदायत दी है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो हिली और लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में ट्रैवल करने से बचे। हमारे किसान भाइयों से भी गुजारिश है कि लाइटनिंग और हैवी शावर्स के दौरान खेतों में जाने से परहेज करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। दोस्तों मौसम हसीन है पर सेफ्टी सबसे पहले है। हमारा अरुणाचल सबसे सुंदर है और इसकी खूबसूरती को सुरक्षित रहकर ही एंजॉय किया जा सकता है। कई पन्योर और बाकी अफेक्टेड एरियाज के लोगों के लिए हम दुआ करते हैं कि मौसम जल्द ठीक होए।

0: दोस्तों, ये तो सदाबहार उम्मीद है इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होंगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का रनएफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
5: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल

0: के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर भव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
5: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3, C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3, C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed all

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग से हमारा नेशनल और रीजनल न्यूज बुलेटिन। आकाशवाणी ईटानगर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके आरजे याजू और अब वक्त हो चला है हमारे सबसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल प्रोग्राम का। जी हां, वेलकम टू हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों इस प्रोग्राम में हम रोज किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो न सिर्फ हमारी नॉलेज को बढ़ाता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान और समझ बनाने में मदद करता है। आज की तारीख है 26 जून 2026। आज का दिन पूरी दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर ध्यान खींचता है। आज है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, यानी अत्याचार के शिकार लोगों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों ये दिन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और आज के समाज में इसका क्या महत्व है, इस पर हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। पर चलिए सबसे पहले सुनते हैं इस खूबसूरत सुबह का पहला गाना, जिसके बाद हम इस मुद्दे की गहराई को समझेंगे।

0: noche.
1: Suzuki Alto K10 comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर पर। आइए सबसे पहले इसका थोड़ा एजुकेशनल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। 12 दिसंबर 1997 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और हर साल 26 जून को इस दिन के रूप में मनाने का फैसला किया। सबसे पहला दिवस साल 1998 में मनाया गया था। इसके पीछे दो बड़े ऐतिहासिक कारण हैं दोस्तों। पहला ये कि 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर पर साइन किए गए थे, जो दुनिया का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें ह्यूमन राइट्स की रक्षा का वादा किया गया था। दूसरा कारण ये कि 26 जून 1987 को यूएन का सबसे बड़ा कानून कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफिशियली पूरी दुनिया में लागू हुआ था। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब कोई भी व्यक्ति या अथॉरिटी किसी को जानबूझकर फिजिकल या मेंटल रूप से बेहद दर्द पहुंचाती है, चाहे वो किसी से सच उगलवाने के लिए हो, सजा देने के लिए हो या डराने के लिए हो, तो उसे टॉर्चर कहा जाता है। कानून कहता है कि टॉर्चर इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है और इसका कोई बहाना नहीं होता।

दोस्तों कानून तो बन गए लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन इस दिन का मकसद सिर्फ जुर्म को याद करना नहीं है बल्कि उन सर्वाइवर्स को सहारा देना है जो इस हॉरर से निकलकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर रहे हैं। आइए एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं और फिर बात करेंगे कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।

दोस्तों, टॉर्चर का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता बल्कि इसका सबसे गहरा असर इंसान के दिमाग और आत्मा पर होता है। आइए इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और रिकवरी के बारे में कुछ जरूरी बातें करें। जो लोग किसी भी तरह के अब्यूज या टॉर्चर से गुजरते हैं, उन्हें जिंदगी भर ट्रॉमा, डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस मेडिकल कंडीशन को PTSD यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जहां लोग हर वक्त एक दर्द के साये में जीते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल फंड बनाया है जिसे UN वॉलंटरी फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर कहते हैं। ये फंड हर साल पूरी दुनिया में लगभग 50,000 सर्वाइवर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और लीगल हेल्प पहुंचाता है ताकि वो इस दर्द से बाहर निकल सके। एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार समाज के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज या किसी भी तरह के क्रूअल ट्रीटमेंट के खिलाफ आवाज उठाएं। किसी भी सूरत में टॉर्चर को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज के इस इंटरनेशनल डे पर आइए हम सब मिलकर ये प्रण ले कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां हर इंसान की डिग्निटी यानी उसके सम्मान की रक्षा हो, जहां डर नहीं बल्कि प्यार और सुरक्षा हो। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी गाने का। आप सुनते रहिए आकाशवाणी टानागर। हैव अ पीसफुल एंड ब्यूटिफुल डे अहेड।

दोस्तों ये था हेलो इटानगर। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी में ताजा समाचार। सुनिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को कड़ी सिफारिशों के साथ सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद श्री सिंह और मुख्यमंत्री पंतनगर में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले राउंड में जगह बनाई। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने क्रोएशिया को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। उधर डलास स्टेडियम में जापान और स्वीडन का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे हैं। अगले राउंड में जापान का सामना 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। इसी बीच कैंसस सिटी में नेदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-0 हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India

सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू और अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका हम सबको पूरे हफ्ते इंतजार रहता है। जी हां, शुरू हो चुका है आपका फेवरेट शो फिल्मी गपशप। दोस्तों, आज टिंसल टाउन यानी हमारे बॉलीवुड से ऐसी ऐसी चटपटी और हैरान कर देने वाली खबरें आई हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर टक्कर चल रही है, नए ट्रेलर्स धमाके कर रहे हैं और सेलेब्स बड़े बड़े ऑनवर्ड्स अवार्ड्स जीत रहे हैं। आज इन सब पर बहुत लंबी और गहरी चर्चा होगी, पर चलिए सबसे पहले इस फिल्मी सफर का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ।

0: राइट ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्कर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

दोस्तों इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों के बीच बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहली फिल्म है कॉकटेल 2 और दूसरी है इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा। आइए उनकी पूरी कमाई और पब्लिक रिस्पांस की डिटेल जानते हैं। होमी अदाजानिया की डायरेक्शन में बनी कॉकटेल 2, जिसमें शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में हैं, उसने थिएटर्स में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है। फिल्मों के रिव्यूअर्स ने भले ही इसे मिक्स रिव्यूज दिए हों, पर जनता इसे बहुत प्यार दे रही है। दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में इंडिया में 70.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और अगर वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो इसने 108 करोड़ का आंकड़ा पार करके एक नया माइलस्टोन बना दिया है। फिल्म की स्टोरी लंदन और केपटाउन के हसीन बैकग्राउंड्स में एक लव ट्रायंगल पर आधारित है जो यंगस्टर को काफी पसंद आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर इम्तियाज अली और म्यूजिक मास्टर एआर रहमान की जोड़ी की फिल्म में वापस आऊंगा ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, शार्वरी और वेदांग रैना है। शुरुआत में इस फिल्म की ओपनिंग बहुत धीमी हुई थी और सबको लगा कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन दोस्तों प्योर वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों की तारीफों के दम पर इस फिल्म ने सेकेंड वीक में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब हैरान हैं। फिल्म ने 14 दिनों में इंडिया नेट 34.75 करोड़ और दुनिया भर में 51.78 करोड़ कमाकर खुद को एक हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसकी कहानी एक 95 ईयर ओल्ड बुजुर्ग पर है जो स्ट्रोक के बाद अपने पार्टीशन के दौरान खोई हुई यादों और रिश्तों को ढूंढता है। दोस्तों इम्तियाज अली और एआर रहमान जब भी साथ आते हैं दिलों को छू लेते हैं। अगर आपने ये दोनों फिल्में अभी तक नहीं देखी है तो इस वीकेंड का प्लान बना लीजिए। चलिए ऐसी फिल्मी जोश के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना कॉकटेल मूवी से।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। पिछली रात मुंबई के जुहू में बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन्स अवार्ड 2026 का चौथा एडिशन धूमधाम से मनाया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे एक ही छत के नीचे नजर आए। आइए देखते हैं कि सितारे ने कौन सा बड़ा खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ी कुमार को इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड द पीपल्स सुपरस्टार एंड स्टाइल आइकन मिला। अक्षय ने अपनी फिट बॉडी और बदलते फैशन से एक बार फिर प्रूव कर दिया कि उनका स्टाइल सबसे अलग है। अपनी एक्टिंग और हसीन लुक्स के लिए मशहूर शाहिद कपूर को आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा का रास्ता दिखाया गया और उन्हें इस खिताब से नवाजा गया। आयुष्मान खुराना को उन्हें उनकी फिल्म थमा के लिए पावर पैक परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। दोस्तों आयुष्मान हमेशा ऐसी फिल्में चुनते हैं जो सबको हैरान करती है। अवार्ड से पहले बोमन ईरानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वाणी कपूर जैसे दरादर एक्टर्स ने सिनेमा के बदलते दौर पर बहुत गहरी चर्चा की, जिसे सुनना हर फिल्म लवर के लिए एक ट्रिक था। सच में दोस्तों बॉलीवुड में हमेशा जब ऐसी रातें आती है तो चकाचौंध बढ़ जाती है। चलिए इन्हीं सितारों के नाम पर सुनते हैं एक और जबरदस्त गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट याजू और आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। बॉक्स ऑफिस और अवार्ड्स के बाद अब बात करते हैं उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जिनका क्रेज इस वक्त फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। जून के इस आखिरी हफ्ते में थिएटर्स और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा धमाका चल रहा है। अक्षय कुमार की ये मैसिव मल्टी स्टारर कॉमेडियन और एक्शन फिल्म आज 26 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का स्केल इतना बड़ा है कि इसको बनाने में लगभग 50 वैनिटी वैन्स और 900 लोगों की क्रू ने दिन रात काम किया है। फैंस अक्षय कुमार और रवीना टंडन को सालों बाद एक साथ बड़े स्क्रीन पर देखकर सिनेमा हॉल्स में सीटियां बजा रहे हैं। इंटरनेट पर अगर इस वक्त किसी चीज का सबसे ज्यादा दबदबा है तो वो है यशराज फिल्म की आने वाली स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा का टीजर। बस इस फिल्म में आलिया भट्ट और शार्वरी पहली बार सुपर स्पाइस के रूप में पूरी तरह से लिथल एक्शन करती हुई नजर आएंगी। ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि बॉलीवुड की लड़कियां अब हॉलीवुड के बड़े एक्शन हीरोज को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वही कॉमेडी लवर्स के लिए सबसे बड़ी खबर अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइज धमाल 4 का प्रोडक्शन ऑफिशियली बड़े स्केल पर शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार ये पागल पलटन जंगल या रोड पर नहीं बल्कि एक क्रूज शिप और समुद्र के बीच खजाना ढूंढते हुए हंसी का ऐसा माहौल बनाएंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, आलिया का फियर्स एक्शन और धमाल 4 की पागलपंती को देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें जरूर बताइएगा। चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों अब बात करते हैं हमारी देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर एक और बहुत बड़ा धमाका किया है। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस एंजेलिना जोली के साथ एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में स्क्रीन पे शेयर करने जा रही है। इस खबर के

देखते हैं, आते ही पूरे भारत के फैंस खुश से झूम उठे हैं। देसी गर्ल सच में देश का नाम बहुत ऊंचा कर रही है। अगर आप इस वीकेंड घर बैठकर पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं तो ओटीटी पर भी जबरदस्त ऑप्शंस है। गुल्लक सीजन 5 आ चुकी है सोनी लिव पर, मिश्रा परिवार की वही प्यारी और बोली बातें लेकर। वही Z5 पर करिश्मा कपूर की सस्पेंस ट्रेलर सीरीज ब्राउन, और प्राइम वीडियो पर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा राख काफी ट्रेंड कर रही है। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है पर गानों का सिलसिला भी तो बरकरार रखना है। सुनते हैं हमारा ये अगला गीत।

वेलकम बैक दोस्तों। फिल्मी गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे सेलेब्स की पर्सनल लाइफ्स की, जहां से कुछ बहुत ही प्यारी खबरें आई हैं। टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक प्यारी सी बेटी और एक नन्ना बेटा। सोशल मीडिया पर उन्हें पूरी फ्रेटर्निटी से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह अपनी बैक टू बैक ब्रांड एंडोर्समेंट और मूवी साइनिंग की वजह से इस वक्त इंडिया के सबसे महंगे और वैल्यूएबल स्टार की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। उनका एनर्जी लेवल सच में उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों सुनते हैं हमारा अगला गीत।

दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं हमारे शो फिल्में गपशप के आखिरी पड़ाव पर, और आखिर में बात करते हैं फैशन की क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और डायना पेंती की। दोनों ने पिछले दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल में एस डिजाइनर अमीर अग्रवाल के स्टेटमेंट कुटोर आउटफिट्स में जबरदस्त एंट्री मारी और उनके इस लुक्स की चर्चा पूरी दुनिया के फैशन एक्सपर्ट कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने हमेशा की तरह प्रूव किया कि ग्रेस के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चटपटी फिल्मी गपशप। हमें उम्मीद है कि आपको बॉलीवुड के ये लाइव अपडेट्स पसंद आए होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले सुनकर जाइए आज का आखिरी गाना। मेलोडीज का सिलसिला आकाशवाणी ईटानगर पर ऐसे ही चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिये।

दोस्तों ये थी कार्यक्रम फिल्मी गपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। यह आकाशवाणी ईटानगर का रुनेफ 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती

0: समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said he is delighted to meet Queen Maxima of the Netherlands, who is also the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health and a long-standing global voice for financial inclusion. PM Modi said that India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Ministry of External Affairs said that her visit reflects the shared commitment to advancing financial inclusion and draws on India's transformative experience.

0: और अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी और सबसे खास प्रोग्राम का, रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, अगली कुछ मिनटों सिर्फ और सिर्फ आपके नाम, क्योंकि आपकी फरमाइश पर चलेंगे आपकी फेवरेट गाने। और सच बताऊं, आज की सबसे पहली रिक्वेस्ट ने ही मेरा दिल जीत लिया है। ये फरमाइश भेजी है बिहार से और हमारे लिसनर वैशाली ने। वैशाली ने अपनी प्यारी दोस्त दीपा के बर्थडे पर उन्हें सरप्राइज देने के लिए ये गाना चुना है। वैसे दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब बिहार, असम और देश के कोने कोने से ये सब मैसेजेस पढ़ती हूं, तो समझ आता है कि हमारे इस आकाशवाणी जानकर अरुण एफएम की आवाज कितनी दूर तक पहुंचती है। आप सभी का ये सिलसिला हमारे परिवार को और बड़ा बनाता है। थैंक यू विशाली इस स्वीट डेडिकेशन के लिए। आइए दीपा के बर्थडे पर पूरे परिवार की तरफ से प्ले करते हैं किशोर दा का ये नगमा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन डिमांड सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले मैसेज की तरफ जो आया है हमारे बिल्कुल लोकल और बहुत ही प्यारे लॉयल लिसनर का। ये रिक्वेस्ट भेजी है हमारे लॉयल लिसनर गुमेमई बागरा ने जो हिगी बागरा से है। गुमेमई जी हमेशा हमारे शो से जुड़ते रहते हैं और आज उन्होंने लता मंगेशकर जी का एक बेहद खूबसूरत गाना सुनने की फरमाइश की है। शुक्रिया गुमेमई जी हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए। पेश है आपका ये गाना।

0: and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों अगला मैसेज हमारे बॉर्डर पार के पड़ोसी स्टेट से आया है. हमारे डेली लिसनर टेंशन क्रो और उनकी पूरी फैमिली हमें सुन रही है लंखंगसम आसाम से. टेंशन जी अपनी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एवरग्रीन ट्रैक सुनने के रिक्वेस्ट भेजी है. तो चलिए दोस्तों अब सुनते हैं टेंशन क्रो जी का ये रिक्वेस्ट.

दोस्तों, सोरो का ये कारवां आगे बढ़ रहा है और अगला मैसेज जो आया है उसे पढ़कर सच में दिल खुश हो गया। ये मैसेज भेजा है हमारे एक और सुपर लॉयल लिसनर हितेंद्र दास जी ने, जो कुडाली असम से हमें सुन रहे हैं। हितेंद्र जी ने ये गाना किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपने सभी दोस्तों और हमारे आकाशवाणी ईटानगर के सभी आरजेएस के नाम डेडिकेट किया है। हितेंद्र जी, आपका ये प्यार हमारे पूरे स्टेशन के लिए एक बूस्टर डोज जैसा है। हम सभी आरजेएस की तरफ से आपको एक बड़ा सा थैंक यू। चले सुनते हैं आपकी फरमाइश किए जाने वाले गाने।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले लिसनर की तरफ, जो है देवशीष हजारिका जी। देवशीष जी हमें सुन रहे हैं दुनिया असम की सबसे बड़े रिवर आइलैंड यानी माजुली असम से। उन्होंने एक ये गाना रिक्वेस्ट किया है और मुझे लगता है कि दोस्तों कि देवशीष जी हमारे अरुण एफएम के परिवार में बिल्कुल नए जुड़े हैं। देवशीष जी, अगर आप आज पहली बार हमें सुन रहे हैं तो आपका इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी बातें और गाने पसंद आएंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं देवशीष का रिक्वेस्ट किया हुआ ये गाना।

0: दोस्तों चासनी गाने ने तो सच में फिजा में मिठास घोल दी है, पर दोस्तों अब वक्त हो चला है हमारे अगली रिक्वेस्ट की तरफ, और अगली फरमाइश आई है हमारे उन लिसनर की तरफ से जो कभी हमारा शो मिस नहीं करते। ये रिक्वेस्ट भेजा है हमारी लॉयल लिसनर रोमेश रूनू और लक्की ने, जो हमें सुन रहे हैं गोलाघाट असम से। इन तीनों यारों ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हुए फिल्म सिलसिला का एक बेहद ही आइकॉनिक गाना अपने सभी दोस्तों के नाम किया है। सही बात है दोस्तों, दोस्ती से प्यारा रिश्ता कोई नहीं होता, और आप सभी लिसनर के साथ हमारे ये दोस्ती का रिश्ता भी ऐसा ही सदियों तक गुनगुनाता रहेगा। आइए सुनते हैं आज का ये अगला नगमा रोमेश रूनू और लक्की के दोस्तों के लिए।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

दोस्तों, अचानक से हमारे स्टूडियो में एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम में, जिसके चलते हम ये जो रिक्वेस्ट रोमेश रूनू और लकी ने भेजा है, मैं उसे प्ले नहीं कर पा रही, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दूसरी रिक्वेस्ट के बाद मैं जरूर प्ले करूंगी। अगली फरमाइश जो आई है हमारी लिसनर ज्योति सुरीन की तरफ से है, जो हेलम असम से हमें सुन रही है। ज्योति जी ने बहुत ही मजेदारी गाना चुना है, पैसा नहीं तो कौन।

सही बात ज्योति जी, आजकल पैसे के बिना थोड़ा मुश्किल तो है, पर हमारे पास आप सभी लिसनर के प्यार का जो खजाना है उसके आगे सब फीका है। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ और सुनिए ये नगमा।

तक घुस गई। पैसा सब कुछ नहीं, पर बिना पैसा कुछ भी नहीं, ये दुनिया का सच है। अगर तोड़ता है तो बना भी देता है।

दोस्तों कहना पड़ेगा इस गाने ने तो माहौल ही बदल दिया। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे स्टूडियो में एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चलने के कारण आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, उस सिस्टम ग्लिच की वजह से हमारा बहुत ही प्यारे और लॉयल लिसनर रोमेश, रूनू और लकी की जो रिक्वेस्ट थी देखा एक ख्वाब, वो गाना भी लोड नहीं हो पा रहा है। मैं आप तीनों से दिल से माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास शो की टाइम लिमिट बहुत कम बची है, इसलिए मुझे शो को यही रैप अप करना पड़ेगा और मैं आपका वो गाना आज नहीं बजा पाऊंगी। पर दोस्तों आप फिर से आप अपना रिक्वेस्ट कल फिर से हमें भेज सकते हैं।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे पी दोले तथा तकनीकी अभियंता दीनयोग। तो दोस्तों बने रहिए रन एफ एम के साथ। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे आरजे मांझ। अब मुझे यानी अपने आरजे को दीजिए आज्ञा। शुभ दिन, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के

0: प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from tomorrow to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said, India remains committed to sharing its experience with partner countries worldwide. Queen Maxima is visiting India in her capacity as the United Nations Secretary General's Special Advocate for Financial Health. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packaged LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, क्रोध तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट चुके होते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। नमस्कार आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे बिंदुंग दिंदो मांझ। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की दोपहर की प्रसारण सभा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत्य एवं तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। दोस्तों, इससे पहले यानी सुबह के प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे याजू के साथ, और अब आपका साथ देने आई हूं मैं आपकी आरजे बिंदुंग दिंदो मांझ। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम हमारी प्रसारण सभा की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं अब से लेकर शाम के 4:25 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। 11:10 पर दोस्तों आप सुनेंगे फिल्मी लहर का कार्यक्रम, जिसके बाद 11:30 पर प्रसारित होगा वेस्टर्न मेलोडीज। ठीक 12:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद 12:10 पर प्रसारित होगा गजल का एक खास कार्यक्रम। 12:30 पर हम सुनाएंगे आपको गीत माला का कार्यक्रम, एक खास डेडिकेटेड प्रोग्राम हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक 1:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद 1:10 पर हम लाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम सुनेंगे 60s से लेके 80s के दशक के कुछ सुनहरे हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां। 1:40 पर दोस्तों प्रसारित होगा हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा नगमा, जिसके बाद ठीक 2:00 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए। 2:30 पर हम सुनेंगे हिट्स ऑफ 90s का कार्यक्रम, जिसके बाद 2:58 पर प्रसारित होगा न्यूज हेडलाइंस। फिर आप सुनेंगे मिशमे कमान श्रोताओं का कार्यक्रम, जिसके बाद आप सुनेंगे तय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर दोस्तों हम लाएंगे बॉलीवुड अपडेट्स, फिल्मी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से नए गॉसिप घूम रहे हैं फिल्मी गलियों में, सभी खबरें हम आपके पास पेश करेंगे बॉलीवुड अपडेट्स में। 3:40 पर आप सुनेंगे वंचो श्रोताओं का कार्यक्रम, वंचो भाषा में समाचार, जिसके बाद 3:45 पर हम सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का कार्यक्रम। ठीक 4:00 प्रसारित होगा ईदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम, ईदुमिश्मी भाषा में समाचार, जिसके बाद 4:05 पर हम लाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा नगमा। 4:20 से लेकर 4:25 तक प्रसारित होगा तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दोपहर की प्रसारण सभा की रूपरेखा। चलिए अब शुरू करते हैं फिल्मी लहर का कार्यक्रम। दोस्तों, फिल्मी लहर में आज सबसे पहला गीत मैं आपके साथ पेश करने जा रही हूँ फिल्म ये जवानी है दीवानी का कबीरा। दोस्तों, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे गला में जरा सा खराश है, जिसकी वजह से शायद आवाज थोड़ी हल्की पड़ सकती है, लेकिन मैं जोरदार कोशिश करूंगी कि बिल्कुल उतने ही उत्साहत से मैं आपके साथ शेयर करूं आज का ये दिन जितना कि मेरे मन में है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो मुझे माफ कीजिएगा, और ये ना सोचिए कि शायद मैं बोर्ड हूं या मैं थकी हुई हूं, बस मेरे गला में थोड़ा खराश है, तो मुझे माफ कर दीजिए। और चलिए सुनते हैं ये जवानी है दीवानी का कबीरा।

दोस्तों, गलती ना नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। चलिए अब सुनते हैं फिल्मी लहर में अगला गीत। हम सुनेंगे ओम शांति ओम फिल्म से धूम ताना।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, फिल्मी लहर में आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब आपको जोड़ते हैं कामसेन तांगजांग के साथ वेस्टर्न मेलोडीज प्रोग्राम के लिए। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न मेलोडीज के कार्यक्रम के बाद आप सीधा जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई।

0: गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station on the written complaint of Trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Rama Shankar Mishra, Subhash Srivastava, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. The SIT headed by Lucknow Divisional Commissioner Vijay Vishwas Pant submitted its preliminary report to the government on Tuesday, making strict recommendations in the matter. Following this, the FIR was registered yesterday. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. India, along with 34 nations, has signed a US-led initiative to build trusted and resilient supply chains to power artificial intelligence AI technologies at the second Pax Silica Summit in Washington yesterday. US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg said the joint statement on AI opportunity, under which participating countries aligned behind a pro-growth, pro-innovation regulatory approach for the AI era. Home Minister Amit Shah has lauded the efforts of those who are engaged in the fight against drugs. On the International Day Against Drug Abuse, Mr. Shah said India has waged the strongest battle against the global challenge of drug abuse. In a social media post, he said narco cartels have been ruthlessly dismantled. Prime Minister Narendra Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The Prime Minister last visited Seychelles in 2015. The External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस सुहानी दोपहर में जब दिन अपनी रवानी पर है, हम लेकर आए हैं एक ऐसा सफर जो अल्फाजों की नजाकत और सुरों की मिठास से सजा हुआ है। अगले कुछ समय तक हम सुनेंगे दिल को छू लेने वाले बेहतरीन गजलें, जिनमें मोहब्बत है, यादें हैं, एहसास है और जिंदगी के कई खूबसूरत रंग छुपे हुए हैं। तो अपनी चाय या कॉफी का एक प्याला लीजिए, थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालिए और खो जाइए गजलों की हसीन महफिल में। मैं हूँ आपकी आरजे मांज और आप सुन रहे हैं गजल का ये खास कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की महफिल की पहली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में, मैं नशे में हूँ।
1: सिडनी के संगीत प्रेमियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और हैप्पी बर्थडे। सिडनी ओपेरा हाउस जो है, आपको मालूम है, वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू इन द वर्ल्ड। मुझे याद है 1979 में मैंने जो कॉन्सर्ट कैरियर अपना शुरू किया था, वैसे तो उससे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन जिसको कहना चाहिए ना कि फैदर इन ए कैप, तो वो 79 में वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर और 82 में रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क में कार्नेगी हॉल। तो दीज आर ऑल द माइलस्टोन्स।

So Opera House, Sydney Opera House is one of them. उसके लिए मैं I'm grateful to my sponsors, my organizers, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और grateful to my audience, जिनसे हमेशा प्यार ही प्यार मिलता है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज बिछड़े हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में। चलिए, गजलों की इस खूबसूरत महफिल के बाद अब वक्त है एक ऐसे खास कार्यक्रम का जो दिल से जुड़ा है और समर्पित है उन वीर जवानों के नाम जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पर तैनात है। स्वागत है आप सभी का गीत माला हमारे वीर जवानों के नाम में। ये एक विशेष प्रोग्राम है जहां हर गीत उन देश के रक्षकों को सलाम करता है जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारी हिफाजत का फर्ज निभा रहे हैं। हमारी दुआ है कि ये सुर और ये गीत उन तक पहुंचे और उनके चेहरों पर एक मुस्कान ले आए। मैं हूं आपकी आरजे मंज और अगले कुछ समय तक हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गीतों की एक खास माला सिर्फ हमारे वीर जवानों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत के साथ। जो पहला गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो है फिल्म रॉकस्टार से नादान परिंदे।

दोस्तों आप सुन रहे थे नादान परिंदे, एक ऐसा गीत जो हौसले, उम्मीद और घर लौटने की चाहत को दिल से बयां करता है। हमारे वीर जवानों के लिए ये गीत एक खास एहसास लेकर आता है। और अब इस गीत माला को आगे बढ़ाते हुए पेश है एक और खूबसूरत नगमा। ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में मोहब्बत, दुआ और अपनों की अहमियत कितनी गहरी होती है। फिल्म गजनी से दोस्तों अपनी मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल के साथ चलिए सुनते हैं गुजारिश, जिसे गाया है जावेद अली और सोनू निगम की बहुत ही खास जोड़ी ने। मैं हूं आपकी आरजे मंच और आप सुन रहे हैं गीत।

Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप सुन रहे थे सोनू निगम और जावेद अली की एक बहुत ही यूनिक जोड़ी में गुजारिश, दिल को सुकून देने वाला गीत जो उम्मीद और दुआओं की खूबसूरती को महसूस कराता है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा बड़ी ख्वाहिशों से नहीं बल्कि छोटी छोटी उम्मीदों और सपनों से भी रोशन होती है। शायद इसीलिए हर नई सुबह एक ऐसी एहसास लेकर आती है। चलिए, अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है फिल्म रोजा का एक बेहद प्यारा गीत जो हर दिल में एक नई उम्मीद जगाता है। गीत का नाम है छोटी सी आशा, जिसे गाया है ए आर रहमान और मिनमिनी की जोड़ी ने। आशा करती हूँ दोस्तों कि इस गीत का आप आनंद लेंगे और अपने दिल की छोटी सी आशा को हवा देंगे।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे छोटी सी आशा, एक ऐसा गीत जो हर दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगाता है। और अब गीतमाला के इस खास पेशकश में वक्त है एक और दिल को छू लेने वाले नगमे का। कभी कभी दोस्तों जिंदगी की राहों में हम सब किसी ना किसी तलाश में होते हैं, यादों की, अपनों की, या फिर उन लम्हों की जो हमेशा दिल के करीब रहते हैं। हमारे सरहद पर तैनात वीर जवानों के नाम। पेश है एक बेहद खूबसूरत गीत।

जो इन्हीं जज्बातों को अल्फाज दे देता है। फिल्म सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ से दोस्तों लकी अली की आवाज में चलिए सुनते हैं जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल। मैं हूँ आपकी आरजे मांझ और आप सुन रहे हैं गीत माला हमारे वीर जवानों के नाम सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दोस्तों दिल से दिल तक। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे इस खास पेशकश के बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, तो कहीं जाइए मत, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर लौटेंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक के सेगमेंट के साथ, जहां हम आपको ले जाएंगे 60s से लेके 80s के उन दशकों में जहां गीत सीधा दिल से निकलता था और दिल पे लगता था। चलिए सुनते हैं, पेश है हमारा गीत जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृह मंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक

में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुरानी यादों का अपना ही एक जहान होता है, हर नगमे में छुपा एक हसीन अरमा होता है, जो सुर दिल को छू जाए वो कभी पुराने नहीं होते, संगीत का हर सुनहरा लम्हा हमेशा जवान होता है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं हमेशा बस दिल से दिल तक। और अब वक्त आ गया है एक ऐसा सफर का, जहां हर गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि एक खूबसूरत याद है। आप सभी का स्वागत है हिंदी क्लासिक म्यूजिक में, जहां हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर 60s से 80s के वो अमर गीत जो आज भी हर दिल की धड़कन बने हुए हैं। ये वो दौर था जब लफ्जों में शायरी थी, सुरों में सादगी थी और हर गीत एक कहानी कह जाता था। आज हम उन्हीं अनमोल नगमों के साथ फिर से जिएंगे वो हसीन लम्हे, और इसी खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसके बोल आज भी मोहब्बत की जुबां माना जाता है। फिल्म कभी कभी से चलिए सुनते हैं दिल को छू लेने वाला अमर गीत कभी कभी मेरे दिल में। मैं हूं आपकी आरजे मंज और आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों, अभी आपने सुना कभी कभी मेरे दिल में एक ऐसा अमर गीत जो हर दौर में मोहब्बत की खूबसूरती को नए अंदाज में बयां करता है। अभी सुनहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं कैसे गीत से, जो दोस्ती, वफादारी और

अपनापन की महक से भरा हुआ है। कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी में अगर सच्चे दोस्त मिल जाए तो हर सफर आसान और हर खुशी दोगुनी हो जाती है। तो आइए इसी हसीन एहसास को महसूस करते हैं और सुनते हैं फिल्म दोस्ती का बेहद मशहूर और दिल को छू लेने वाला गीत मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों इस गीत को गाया है द लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी ने, वहीं पे गीत के बोल दिए हैं मजरूर सुल्तान पूरी ने, संगीत के निर्देशक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों मैं हूँ आपकी आरजे मंच और चलिए सुनते हैं मेरी दोस्ती मेरा प्यार।

दोस्तों आप सुन रहे थे मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों ये एक ऐसा गीत है जो सच्ची दोस्ती की गहराई और उसके अनमोल एहसास को खूबसूरती से बयां करते हैं। अगर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बचपन में जब मैं इस फिल्म को दूरदर्शन के चैनल पर देख रही थी तो मेरे आंखों से आंसू गिर गए, क्योंकि इसमें एक दोस्त अंधा होता है और दूसरा दोस्त लंगड़ा, लेकिन दोनों की जोड़ी मिलकर आगे ऐसे बढ़ते हैं कि कई लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप जैसा भी हो, अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। 1964 की ये फिल्म है, फिल्म का नाम है दोस्ती। चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस सुनहरे सफर में एक और अनमोल नगमे की तरफ। जिंदगी भी दोस्तों एक दरिया की तरह है, कभी लहरें शांत होती है तो कभी तूफान रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो अपनी मंजिल पर भरोसा रखता है वो हर मुश्किल से गुजरते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसी हौसले, हिम्मत और लगातार बढ़ते रहने के जज्बों को सलाम करता हुआ पेश है एक सदाबहार गीत, मांझी चल तू। चलिए सुनते हैं फिल्म आया सावन झूम के, जो कि रिलीज हुई थी 1969 को। इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत मांझी चल तू।

0: Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों चलिए अभी सुनहरे सफर को एक और नए एहसास के साथ आगे बढ़ाते हैं। हर मोड़ पर नए चेहरे मिल जाते हैं, मगर दिल के सच्चे जज्बे कम ही नजर आते हैं। इसी एहसास को और गहरा करते हुए अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा नगमा जो शहर की भीड़, लोगों की रंगत और जिंदगी के अनेक चेहरों को बयां करता है। फिल्म किस्मत से, जो कि रिलीज हुई थी 1968 को, चलिए सुनते हैं लाखों है यहाँ दिल वाले। मैं हूं आपकी आरजे मंज और आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का हमारा ये खास पेशकश सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक।

0: Tourist is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: दोस्तों, अब हम अपनी इस सुनहरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। क्लासिक

हिंदी म्यूजिक के इस खूबसूरत सफर को हम एक चुलबुले रंगीन और दिल को हल्का कर देने वाले गीत के साथ अलविदा कहेंगे। दोस्तों, कुछ यादें, कुछ अदाएं मुस्कान बन जाती है और कुछ नजरें दिल का अरमान बन जाती है। इसी हसीन मस्ती और प्यारे से अंदाज के साथ पेश है फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये सुपरहिट नगमा, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की चुलबुली जोड़ी ने। सुनते हैं ये लड़का हाय अल्लाह।

Station, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूक

0: और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, हिंदी क्लासिक म्यूजिक के इस रंगीन महफिल को यही विराम देते हुए अब वक्त है एक नए संगीत में सफर का, जिसमें हर अंदाज नया है, हर धुन दिल के और करीब है। आप सभी का स्वागत है और एक और खूबसूरत कार्यक्रम में हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, जहां हम लेकर आएंगे आपके पसंदीदा नए और यादगार बॉलीवुड नगमे जो आज की पीढ़ी के जज्बातों को भी अपनी धुन से जोड़ती है। चाहे मोहब्बत हो, दोस्ती हो या जिंदगी के नए रंग, यहाँ हर गीत एक कहानी के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गीत जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है फिल्म इशकजादे का झल्ला वल्ला, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने। चलिए दोस्तों सुनते हैं झल्ला वल्ला।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart bay row plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: दोस्तों, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस सुहाने सफर पर चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म रॉकस्टार से सुनेंगे तुम हो।

दोस्तों, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के नगमों में आज के लिए बस इतना ही। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम

करते हैं दिल से दिल तक। और अब वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जुड़ने के लिए। हमारे रोज के खबरें मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर दोबारा मिलेंगे हिट्स ऑफ 90s के कार्यक्रम में।

0: Nation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका की नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ

0: दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका

उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का दोस्तों हिट्स ऑफ 90s के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी आरजे बिंदुंगिंदु मांझ। वक्त है यादों की उस गली में लौट जाने का दोस्तों, जहां हर धुन में एक अलग ही जादू था, हर गीत सीधा दिल को छू जाता था। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही खास कार्यक्रम में हिट्स ऑफ 90s, जिसे हम कहते हैं, जहां हम लेकर आएंगे वो सुनहरे नगमे जो आज भी उतने ही ताजा है जितने पहली बार लगे थे। वो दौर जब मोहब्बत के गीत रेडियो से लेकर हर दिल की धड़कन बन जाता था और हर मेलोडी एक कहानी कह जाता था। दोस्तों, यादों की किताब में कुछ पन्ने हमेशा खिलते रहते हैं। 90s के नगमे दिल के कोने में आज भी बसते रहते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो प्यार के एहसास को एक नया रंग दे देता है। फिल्म गुलाम से सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की बहुत ही मेलोडियस जोड़ी से, जादू है तेरा ही।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes.

0: seater, smart play studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों चलिए अब इस 90s के सुनहरे सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं कैसे गीत पर जहां दिल और दिमाग की जंग मोहब्बत की दीवानगी में बदल जाती है. कभी सोचता है संभल जाए, कभी खुद ही बह जाता है ये जज्बा जो लफ्जों में ना समाए वो बस महसूस होता है. इस दीवानगी और प्यार भरे एहसास के साथ पेश है फिल्म दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक दिल तो पागल है, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण की जोड़ी ने. तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये खास पेशकश सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के हिट्स ऑफ 90s में.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। चलिए, अब 90s के हसीन सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं एक ऐसा नगमा जो दूरियों के बीच पनपती मोहब्बत को एक नई पहचान देता है। दूर होके भी दिल पास रहता है। मोहब्बत के रिश्ते अल्फाज से नहीं, एहसासों से कहते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है फिल्म परदेश का ये बहुत ही प्यारा सा गीत। कुमार सानू की आवाज में दो दिल मिल रहे हैं। चलिए।

kin gman lai kung song pola ke agit sipul tong kin lai kung song krai me glat song set ka gya chuning dnk stone crusher plan kai panyor district welcome gate gai he song kum brin we phal phal la da gram pal la he medical team papum pare district nin ndrf rescue team san ambulance kapan dr atul commandant phai baji kyap morat the ka tau wahayo network ka ka blog ne तो थने दो ने का दोम तो अन वन तारीख तल मो कम रन यशी लाय वे का सु हाय यो न्याय करे दो ने का दात ला हाय यो काम को कर उसन असम चोंग तो दो ने का दात ला चोंग को मो विक्रम पल ला का चोंग ती नंग उसन वे को ही पल ने का फ्रैक्चर सम ला दो ने का दात ला न्या शो मो क्रम को पल उसन वे रेस्क्यू टीम सन बचाए मतो दो ने का थो का थो एसडीआरएफ रिसर्च सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तुन मन का नन का सिंगप मो मिनट वाई का सु डेम है का राफ लोअर पन्योर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नेपको फा गाल कसम फा सौ का ग्लाड कुमरन चोंग हमालाम सन ने होंग मतो दोने का दातला एसडीआरएफ जवान सन चोंग शाओ मो हमालाम सन ने होंग ने का रिंग का चलना मतो दोने का दातला एक्स सर्विस मैन निंग पुलिस फ्लड फ्लड मसन समला हे हयो ग्लाट चोंग रे लाम सन वे सफा कट मतो दोने का दातला ग्लाकंदा मो किन चोंग वन वीकेवी स्कूल हे चंग तो तोय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का दो का गा बिशी मो वनसन 10 है का पीटापुल हे शौ लतो का चोंग झाल वन वीकेवी स्कूल ले का नहर लगन हे ला का तो स्कूल टीचर को मो थुमला वन झाल वन भलीजुम गोहपुर आसाम हे ब्लान का तो रा कैंसर पेशेंट सनवे तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहरलगन हे शाओलतो तिनंग संग्याप मोकिन टूरिस्ट मुनसनवे एयरफोर्स निंग स्टेट एविएशन का हेलीकॉप्टर हे बचाए कतो वरा लोहित डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वाक्रो पुलिस स्टेशन हे एफआईआर फाइल कन कतो ऑल लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सौका ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लन हे जे इंफ्राटेक लिमिटेड फा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट NHIDCL पैकेज 1 ब्रह्मकुंड लेका कमलंग स्ट्रेच वाक्रो लोहित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट लंहे क्रूंग कंतो हे विंजे इंफ्राटेक लिमिटेड वाय अपाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कंतो हे फाइल समला रा कंपनी का डिमांड पी नेरा पी कन करा धमकी फी ने का कंस्ट्रक्शन काम रुकाय में दोने का धमकी फी का तो दोने डाटला तय तगक राज्यसभा एमपी फा कतान मेंबर अरुणाचल प्रदेश सोंग थर्सडे वे पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली ही राज्यसभा मेंबर समला धा ओथला का राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधा कृष्णा गाय है राविका पांगवे चल लेबर सरो ने काम कन का वन मालिक वी स्कूल टीचर लन का स्कूल टीचर लत ने मारा लोहिंग नट मो नट मुक तामरा बीजेपी मेंबर सौका अरुणाचल प्रदेश फा प्रेसिडेंट लन का मेंबर सौका अरुणाचल प्रदेश फा प्रेसिडेंट लत ने मालग्रा वन कसम चा ने मालग्रा वी वाइस प्रेसिडेंट फाय फ्रूटना का वरा ब्लोंगटा सफा पुसा है का पोटिन तो शुरू समला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दो का ब्लोंग वन पुटिन लिखा होच मो बंदो ने का वरा वन्ने पुटिन लिखा किमिन ब्लोंग वन रफो ने दोने दोना पुतोरा वन्ने अन ब्लोंग पांग हे पुसा निंग पोटिन ब्लोंग वन के तून मंदो ने का दातला वरा होच लिखा सगाली ब्लोंग वन्ने फो ला दोने का दातला Union Ministry of Information and Broadcasting Secretary Chanchal Kumar, Film and Television Institute, Rakab Poma Gai Hi Theka, Thursday Wai. So ka, wahai kaam shau chali mun songsan FTII site hi shau kaam kantao ka, water treatment plant hi thongshan ka. Itanagar officials and pai. कचामो मीटिंग करने का पीएचईडी एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट निंग यूपीआई डिवीजन ऑफ पावर डिपार्टमेंट सन फाइवी का मीटिंग कन का सेकेंड सिविल मिनिस्ट्री मीटिंग अंजाव डिस्ट्रिक्ट ही थर्सडे रात सम का सिविल एडमिनिस्ट्रेटिंग निंग इंडियन आर्मी सन फाइव बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कांग पब्लिक वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लन ही कता कता अंजाव डिप्यूटी कमिश्नर मिलो को जिन

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़, मीडियम वेव्स सिपाक्सी सिप्सी चुमसी मीटर्स हो पक्षे सिपहा किलो हर्ट्स में नई चलांग खमते खमती हौने कोमायो मनई वन चीने लंगनी पीते सोंग हिंग पाक साउ तो नई इंग्राजी पी मई सोंग हिंग साउ हो कौ खाम लु नांग प्रिया लोंग फोय मई हनई थोम तिखा अनहित अमू

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे तय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, और फिर उससे पहले आपने सुना मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ती है सुपरहिट फ्रेंचाइजी वेलकम से। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने साफ किया है कि इस फिल्म में उनके साथ वेलकम और वेलकम बैक के दो सबसे पॉपुलर चेहरे अनिल कपूर और नाना पाटेकर इस बार नजर नहीं आएंगे। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अनिल कपूर और नाना पाटेकर उनके लिए परिवार जैसे हैं, और जब भी वेलकम 4 बनेगी तब उनकी वापसी जरूर होगी। उनका कहना था कि ये दूरी परमानेंट नहीं है और फ्रेंचाइजी के अगले चैप्टर में पूरी ओरिजिनल वापस आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वेलकम एक परिवार है, नाना जी, अनिल जी और मैं सब एक फैमिली जैसे हैं। अगर वेलकम 4 कभी बनी तो आप सब उन्हें वापस देख सकते हैं। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि शूट के दौरान उनका अनिल कपूर और नाना पाटेकर से लगातार कांटेक्ट बना रहा। उन्होंने बताया कि दोनों स्टार्स प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और वक्त आने पर वापस जुड़ने के लिए तैयार है। नाना पाटेकर ने तो मजाक में ये भी कहा कि उन्हें बुलाना जरूर, लेकिन अभी वो करंट फिल्म के लिए अवेलेबल नहीं। दोस्तों, वेलकम टू द जंगल वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार के साथ एक बहुत बड़ा एंसेंबल कास्ट नजर आएगा। इस फिल्म में सुनील शेट्टी और अरशद वारसी भी शामिल है, और जो अनिल कपूर और नाना पाटेकर के कैरेक्टर्स के सिबलिंग के रूप में नए रोल्स निभाएंगे। फिल्म की कहानी एक ऐसे ग्रुप के आसपास घूमती है जिसमें गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स और क्विर्की कैरेक्टर्स जंगल के एक इलाके में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। शुरुआत एक फेक फिल्म शूट की तरह होती है, लेकिन धीरे धीरे पूरा मामला क्राइम, कन्फ्यूजन और एक्शन पैक्ड कॉमेडी में बदल जाता है। फिल्म को लेकर ऑडियंस में पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस बुकिंग में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। पहले रिएक्शंस में लोगों ने फिल्म की कॉमेडी और एंसेंबल परफॉर्मेंसेस की तारीफ की है, हालांकि कुछ व्यूअर्स ने क्लाइमेक्स को लेकर मिक्स्ड फीडबैक दिया है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको वेलकम टू द जंगल का एक गीत सुना देते हैं, दीवाने है। दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को और हम फिर लौटेंगे कुछ और बड़े खबरों के साथ।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी बॉलीवुड पर्सनालिटी की। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली अपने काम और पर्सनल लाइफ के बैलेंस को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी मालती मैरी के जन्म के बाद उनका करियर अप्रोच पूरी तरह बदल गया है। प्रियंका ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वो पहले जैसे 5-6 फिल्म साल में नहीं करती। अब वो अपने प्रोजेक्ट्स को काफी केयरफुली सेलेक्ट करती है और अपनी अपने टाइम और रिलेशनशिप्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। उन्होंने कहा, आई डोंट जस्ट पैक माय बैग्स एंड गो ऑफ फॉर अ मूवी एनीमोर। आई एम रियली सेलेक्टिव अबाउट माय टाइम एंड हु आई स्पेंड इट विद। प्रियंका ने ये भी एक्सेप्ट किया कि मदरहुड ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और उन्हें अपनी माँ के सेक्रीफाइसेस की और ज्यादा समझ आई है। उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियंका आखिरी बार द ब्लफ और सिटाडेल में नजर आई थी और अब वो 2027 में बॉलीवुड में कमबैक करने वाली है एसएस राजामौली की साईफाई फिल्म वाराणसी के साथ, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी होंगे। ये फिल्म पहले से ही काफी बज बना चुकी है और ऑडियंस इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, ये थी आज की एंटरटेनमेंट दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। फिल्मों की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है और हम वो सब लाते हैं आपके पास सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। मैं हूं आपकी आरजे मंज और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz। दोस्तों, अब आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार, तो बने रहिए हमारे साथ।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनले मेनिचा आजोक तारीख हुकुरबार इपहासों आजम बाजी पुनी मिनट मुगे फिशम के

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको ले जाने का एक ऐसे म्यूजिकल सफर पर जहां लव्स कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में हम लेकर आए हैं एक नॉन स्टॉप म्यूजिक रिलीज सिर्फ और सिर्फ फिल्म सैयारा के दिल को छू लेने वाले नगमों का। ये वो गीत है जो मोहब्बत को सिर्फ बयान नहीं करते बल्कि उसे महसूस करवाता है, कभी दर्द के रंग में, कभी खुशी की हल्की सी मुस्कान में और कभी यादों की गहराइयों में। कुछ सफर अल्फाजों से नहीं धुन से तय होते हैं। तो दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल को हल्का कर लीजिए और खो जाइए इन मेलोडीज के बीच, क्योंकि अब शुरू होता है सैयारा का म्यूजिक रिले, एक के बाद एक बिना किसी रुकावट के। मैं हूं आपकी आरजे मंज और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: The Maruti is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest market.
3: दोस्तों, हम सैयारा फिल्म का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं ईद उमिश में भाषा में समाचार।
4: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ईद उमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
5: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुची जैनहुलु एहरो मीटू पीली नी एतनिची इदुमिस्मी आहोला किजी दरगालंबो याजाली माने हुलु नी किलोमीटर मैलो की पनियर वेलकम गेट अनंदोची क्रशर मशीन मा जया लेबर काप्य है बुन्यागा हिगाने खाची महो इली जो जाने जो तापते इली खिको को आलोयने जेंदेगाचे ब्रागे है जो तुगाया में फेगा बमहो प्रागे है पपुमपर डिस्ट्रिक्ट मा जिगा जिगा एनडीएलएफ चपहया नंबर में इगा होने फाबगा बदा आहोगा

0: अनि म हुन् तपाईँ
1: एच आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ नाले ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे आहोसो खियामा हो एतनी हेन्दो मार्टिन मिमिची एचासेची आहोजी

दोस्तों, इरुमिश में भाषा में समाचार से पहले हम सुन रहे थे फिल्म सैयारा का नॉनस्टॉप म्यूजिक रिले। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने लिया था ब्रेक, और कंटिन्यू करते हैं इस फिल्म का नॉनस्टॉप म्यूजिक रिले बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक्स के।

तो दोस्तों ये था फिल्म सैयारा का नॉनस्टॉप म्यूजिक रिले। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है मेरे अलविदा कहने का। आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये दोपहर का की प्रसारण सभा पसंद आया होगा। दोस्तों मैं थी आपकी आरजे बिंदु बिंदु मांझ। दोस्तों अब आपको एक सुरीली सफर पर ले जाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में पहुंच चुके हैं आरजे अपर्णा शर्मा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अते एवं तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपका आगे का दिन और सुहाना रहे, सेहतमंद रहे, हमेशा खुश रहे और म्यूजिक सुनते रहे। दोस्तों ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मैं थी आपकी आरजे साइनिंग ऑफ बिंदु बिंदु मंच।

nang anai kabang wala tu akau labor mai yang po response tin thogai mu kachai he nang pen jamun labor mai yang ro lam da khong tu ngoro tu papum pare district ro medical team asi kut mai yang sangnang nai parma NDRF medical team manai rescue team ma ambulance gari kut sangnang medical commandant Dr. Atul pa arang kayang lo phai lokta jaga nang ranap sai bai tan lai nang thok tu ngo phan tu ma chuling rangkhar blai tariksa kham lem lo tathen tu jaga asi jang lo hos hat ma medical team pa stone crusher plan nang thok ma kilometer banga karang kayang tu ngo ro tu asamang kajoy lebar mahing tungwang akhau po khu nang katuk nya ta parma akhau po ja ja katuk tu ngoro runglang ta thok ta response team ra apang katuk nya ta labor mahyang po balang nang hil le maru ngoro kachu pai ru ngo phan ta rang khrap lai tarik sa ke panyor district nang kham lem ta nang lu wana ta mai wa blai po state disaster response force SDRF team ra machu sa ma sarum so kon ru ngoro ta mai kon ru kam nang machu ta wa khrarum khak SDRF sipai hing sehir ma mai po khoi hai mu ngo phan ta परतुम नंग नेपको कॉलोनी नंग खंपंग लोंगवंत सब पंगरांग प लोकल महियंग रे नै एक सर्विसमैन महियंग रा परम पुलिस हेंग र तचारांग रुमो रुंगरांग तथोक त नेपको कॉलोनी नंग बीकेबी स्कूल रिलीफ कैंप नंग वा करोक्सन नै खग महियंग तोंग रुंग मरो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम र फान द परतुम नंग जीरो हावंग नै पीतापोल हावं मनीषा नहलुगुन नंग वाबलियों खाव खाव हिलते परतुंग नंग नेपको भीकेवी स्कूल नंग मासूर काम सोमत मयुंग मांग नई हमवारा अवाने असा नौसा अनई डॉप हिलते परवंग मास्तुन युंग मांग पर आसाम नंग बालियान हा नंग सो हिलते मोरो तो परजु खाम लेम तनंग कैंसर रग मयुंग सी असी पर फाइले फाइखा म मनीषा नहल उनंग तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस स्ट्रीम्स नंग हिलतुंगो फांत परम बलांग वाक्सम से नई खाखाय टूरिस्ट मयंग कतंगन लर हेंग प कतंगन त हेंग प एयरफोर्स पर नई स्टेट सिविल एविएशन डिपार्टमेंट वन हेलीकॉप्टर जहाज अरोम म नहल उनंग तथोक तुंगो फांत लोहित डिस्ट्रिक्ट वाक्रो हानंग ब्रह्मुक ब्रह्माकुन हाम कामलंग हाहाता NHIDCL तकेश वन जखुंगनंग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कामसोमर जे इंफ्राटेक लिमिटेड वन कामसोम पर ऑल लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस कामसोम वन रनई ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन वन मैयर तंगरुम व समाखाम लोहित डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनियन वन मैयं संगनांग FIR पर वाक्रो पुलिस स्टेशन नांग कुत प्रोजेक्ट कमसुम वन कंप्लेन कुरित मामंगो ऑल लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी रनई अपी सपोर्टर्स मैयं र प्रोजेक्ट वंग कॉन्ट्रैक्ट कम चौतम कंपनी र दान खाम ऑल लोहित डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी रनई अपी सपोर्टर्स मैयं र ngnso चौत पढ़ाई म पनर मशुवंग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट कैंप तंगम तहचात मोरो लोहित डिस्ट्रिक्ट एसपी थुतान जंबा रफांत अरुणाचल प्रदेश वंग राज्यसभा अन्या एमपी ताई तगाग्र मनीषा न्यू दिल्ली नंग पार्लियामेंट हाउस नंग अख्तून रूरी फाक्त एमपी ताई तगाग्म अख्तून रूरी पर राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधा कृष्णन र तफाक्त ताई तगाग पर सेतकौरा पांग सेतकौरा तौसकरो पांग नंग बीजेपी नंग न्योब्रो अरुणाचल प्रदेश नंग बीजेपी पर पावर ना वहाइमु कचाय नंग आपी पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट कयंग द रोजु होटल कोवंग पोसा हाम अरो पोटिन हा तक नंग गरीलम तशरांग कंप मचोरना मचेत बजी थोनो नम
tafang tu ngurau state disaster response department ro de putin ham hos ha ata gari lamp majura nam ata katangdal atu ngo fan tu pram batae putin ham kimin ha ata gari lamp tehuro re gari achen pa hungyang ma lamp khuli de pur परम पोसा हाम पुटिन हा रथान र अरेंग लंप कतंग दंग अरु मो रोग तो परम होश ने सागली हातुं गरी लंप तो जेगरू मशुरा नाम मसो गरी प हुंग रु मो फांग तो आचुं सुरकाई वंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सेक्रेटरी चांचल कुमार र मनीषा पुमा हा कुवंग राकाप हा नंग फिल्म एंड टेलीविजन साइट राइगत थलिंग एफ टी आई आई जगानंग हम खग्र कम दो राइगत परम कुमार फिल्म ने टेलीविजन इंस्टीट्यूट वन वाटर ट्रीटमेंट प्लान दो राइगत नंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वन ईटानगर डिवीजन वंग ऑफिशियल्स महिया एग्जाम ने परम पावर डिपार्टमेंट वन यूपीआई डिवीजन वंग ऑफिशियल्स महिया एग्जाम पोंग लग मीटिंग तंगो रोक रुंग रंग इतना थुम रहा।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स एफएम मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। वो कहते हैं ना कि मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो वरना जिंदगी गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुराकर देखिए, आपके साथ जिंदगी मुस्कुराएगी। आज इसे पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसन्न सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। संचरण निष्पादक टी तानजांग, तकनीकी अभियंता पी वी देवरी तथा स्टूडियो और एचपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आप सभी की अपनी आज अपर्णा मौजूद है आप सभी के खिदमत में। करने आई है एक बेहद रंगीन और खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस शुरू कर देंगे हम कुछ ही देर में गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम। लेकिन इससे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे मांझ का, जिन्होंने आप सभी का, जी हाँ, अपने सेकेंड ट्रांसमिशन के दौरान भरपूर एंटरटेनमेंट की है। तो शुक्रिया आरजे मांझ मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बस शुरू कर ही देंगे हम आप सभी का प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर,

गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। ये वो सेगमेंट होता है जहां ना केवल हम आप सभी की मनोरंजन करवाते हैं बल्कि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं, तो कभी कभी शॉर्ट स्टोरीज भी आप सभी को सुनवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा कंपोजिट प्रोग्राम है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूं कि आज के इतिहास में आज की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी, यानी कि 26 जून किस लिए हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट और खास है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन।

नाव सभी को दे दूं। जी हाँ, 1975 में 26 जून यानी कि आज ही के दिन सुबह सुबह देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी की औपचारिक घोषणा की थी। यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का एक सबसे बड़ा और विवादास्पद मोड़ था जो 1977 तक लागू रहा। वंदे मातरम यानी कि जो वंदे मातरम के महान रचयिता और बंगाली उपन्यासकार, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 में हुआ था। उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा जिसने स्वतंत्रता संग्राम में देश के जन जन में राष्ट्रवाद की साहस की भावना भरी। जी हाँ दोस्तों, आज जो है एक और बेहद खास दिन है। 1989 में 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाया जाना शुरू हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो है इसके लिए जो है हस्ताक्षर भी किए गए और हर साल तभी से हम इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे आज ही के दिन मनाते हैं। जी हाँ, तो ये थी थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए। और आज इंटरनेशनल जो है डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे होने के कारण मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूं कि किसी भी तरह के ड्रग्स नार्कोटिक्स का सेवन ना करें। अपने अपने बच्चों को इस खतरनाक जो है एक बीमारी की तरह फैल गई है, एक नेटवर्क जैसे फैल गई है हमारे देश के कोने कोने में, इससे अपने बच्चों को बचा के रखें, खुद भी बचे रहे और से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। नशा मुक्त भारत का यही तो संकल्प है दोस्तों। तो चलिए, हो गई है आप सभी को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से मैंने दिया। और साथ ही जो है एक खास डे जो कि इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज इलिसिट एंड ट्रैफिकिंग डे के बारे में मैंने बताया आप सभी को और मैंने आगाह किया कि ये किस तरह से हमारी जिंदगी को बर्बाद करती है। तो चलिए, अब हम आपको सुना देते हैं चंद बेहतरीन नगमों को। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे आज की गुड इवनिंग ईटानगर का जो सेगमेंट है अभी यहीं पर संपन्न होता है। अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने राजधानी ईटानगर के राकाब स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य में एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के याजाली से 12 किलोमीटर दूर डीएनएल स्टोन क्रशर प्लांट में काम करने वाले 4 मजदूर भूस्खलन से घायल हुए। कई पान्योर जिले में 24 जून को आए फ्लैश फ्लड में लगातार 4 लोगों की तलाश के लिए निपको के लोअर पान्योर जल विद्युत परियोजना के बांध क्षेत्र से आज लगातार तीसरे दिन भी एसडीआरएफ टीम की खोज एवं बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ताई तागक ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में इस राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल का पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम ने पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर भी सभी की निगाह है। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि मादक पदार्थों

0: का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और मतदाताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने बताया है कि नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी।
0: गृहमंत्री ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इस पोर्टल पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने राजधानी ईटानगर के पोमा के निकट राकाब स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट परिसर का दौरा कर निर्माण कार्य एवं बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा आधारभूत संरचना की स्थिति का आकलन भी किया। उन्होंने संस्थान के जल संशोधन संयंत्र का भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा सचिव ने ईटानगर मंडल के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलापूर्ति विभाग तथा यूपिया विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश के कई पान्योर जिले के वेलकम गेट के पास याजाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित DLN स्टोन क्रशर प्लांट के कार्यरत 4 मजदूर अपने शिविर में सो रहे थे, तभी भारी भूस्खलन की चपेट में आकर घायल हो गए। घटना का सही समय अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। राहत एवं बचाव दल को गुरुवार शाम इस घटना की सूचना मिली। घटनास्थल पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है तथा स्टोन क्रशर प्लांट तक जाने वाली सभी सड़क मार्ग अवरुद्ध है। बताया गया है कि कुछ मजदूर मलबे में आंशिक रूप से दबे हुए थे, जिन्हें राहत दल के पहुंचने से पहले ही उनके सहकर्मियों ने बाहर निकाल लिया। पापुमपारे जिले की चिकित्सा टीम तथा NDRF की चिकित्सा एवं बचाव टीम कमांडेंट मेडिकल डॉक्टर अतुल के नेतृत्व में एम्बुलेंस के साथ आज सुबह लगभग 10 बजे घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम को हौद से, जो 24 जून की फ्लैश फ्लड से प्रभावित क्षेत्र में से एक है, लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्टोन क्रशर प्लांट तक पहुंचना होगा। माना जा रहा है कि सभी घायल मजदूर असम के रहने वाले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायलों को कई जगहों पर फ्रैक्चर तथा सिर में गंभीर चोटें आई हैं। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई गई है। राहत दल ने घायलों को सुरक्षित निकालने के लिए निकासी योजना भी तैयारी कर ली है। कई पानीपुर जिले में 24 जून को आए फ्लैश फ्लड में लापता 4 लोगों की तलाश के लिए निपको के लोअर पान्योर जल विद्युत परियोजना के बांध क्षेत्र में आज लगातार 3रे दिन भी सुबह लगभग 10:30 बजे से SDRF की टीम ने राफ्ट के माध्यम से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। अब तक अभियान में लगभग 23 SDRF जवानों का लापता लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोग, पूर्व सैनिक तथा पुलिसकर्मी भी बाढ़ प्रभावित निपको कॉलोनी से मलबा हटाने में सहयोग कर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन टीम के अनुसार कॉलोनी स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के अस्थायी राहत शिविर में अभी भी 62 लोग रह रहे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग ने बताया है कि गुरुवार को जीरो और पीतापुर क्षेत्र से अब तक कुल 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें निपको VKV स्कूल की दिवंगत कर्मचारी का पार्थिव शरीर, उनके पति, पिता तथा 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। बाद में पार्थिव शरीर को असम के बालीजान गोहपुर भेज दिया गया। फ्लैश फ्लड में गंभीर रूप से घायल एक महिला तथा कैंसर से पीड़ित एक मरीज को भी बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से नाहरलगन स्थित तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। इसके अलावा वायुसेना तथा राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के 3 हेलीकॉप्टरों की सहायता से 32 फंसे हुए घरेलू पर्यटकों को भी नाहरलगन पहुंचाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

0: ताइतागाक ने अपने जीवन की शुरुआत बाल श्रमिक के रूप में की थी, बाद में वे शिक्षक बने। वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के सत्ता में आने से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने भारत में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति से शिष्टाचार भेंट भी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं के बीच हुई वैधता अधिक यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय से कम होने या 12 महीने होने अनिवार्य है। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
0: अमेरिका में आयोजित दूसरे बैक्सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर की। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा है कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों में एआई युग के लिए विकास समर्थन और नवाचार समर्थन नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष।
0: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी अभियान की जीत के साथ समापन किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्री लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। जापान के प्रधानमंत्री सोनी ताइकाची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाली 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों में समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashvani, the news read by Shubhashachi Bhattacharji. Home Minister Amit Shah today called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interest and the future of the country's youth. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. He made these remarks while addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi. Mr. Shah said that authorities seized around 2.6 million kilograms of synthetic drugs between 2004 and 2014. In comparison, the quantity of synthetic drugs seized increased to 11.8 million kilograms between 2014 and 2026. He said these figures show that the government's campaign against drug trafficking is making steady progress. In Venezuela, the death toll from two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through the rubble in a race against time to save lives after the earthquake struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from beneath the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude earthquake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude quake. Both occurred at shallow depths, making the destruction more

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव के प्रोग्राम के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार

0: और 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। पैरों में बड़ी बड़ी बिछिया उनको बहुत भाती थी। अब तो उम्र हो गई, लेकिन जब ससुराल की पूरी गृहस्थी संभालती थी तब भी सजने सवारे का समय निकाल ही लेती थी। तीज त्योहार पर तो ऐसे चहकती कि घर के दीवारें भी बोल उठे। परिवार के हर कोई उनकी तारीफ ही करते रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया, घर में नई बहू बेटियां आ गई। घर के ज्यादातर लोग अब उनको अम्मा ही कहते थे। चलिए आज अम्मा के ही एक छोटी सी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कि हम आज किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो गीत जो सॉन्ग अब मैं प्ले करूंगी वो खुद ही बता देगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूं। एंजॉय कीजिए दोस्तों इवनिंग ड्राइव का ये खूबसूरत सी सेगमेंट को।

दोस्तों, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि मैं अम्मा जी के बारे में बात कर रही हूँ और उनके फेवरेट चीज चिड़ियों के बारे में। जी हाँ, ज्यादातर लोग अब उनको अम्मा ही कहते थे। तीज आने वाली थी, इसीलिए कमलेश जी को बड़ी इच्छा हो रही थी कि वो सुहाग का त्योहार है और घर की सभी बहू बेटियों को ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़िया और श्रृंगार का सामान दिलवा दे। लेकिन अब उनकी बहू बेटियां सुनती ही कहां है। उनकी जो पोते की बहू है वो तो हाथ को ऐसे ही रखती है। अम्मा मन मसोच कर रह जाती है। इधर घर में काम करने वाली बाई पूरे हाथों में भर भर के चूड़िया पहनकर पोछा लगाती है और अम्मा को उसकी चूड़ियों की खनक बहुत अच्छी लगती है। और क्या क्या होता है अम्मा के लाइफ में और अम्मा को कैसे कैसे चीजें पसंद है, चलिए देखते हैं। लेकिन हो जाए एक और प्यार भरे गीत आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं और कुछ गीतों के साथ। बने रहे आप सब अरुण एफएम के साथ।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: Arunachal Vasiyo, kripya dhyan de. 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं, तो आप अपने नजदीकी पोलियो

0: बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव के इस सेगमेंट में। तो हम बात कर रहे थे कि अम्मा जी को जो है चूड़ियों की खनक बेहद पसंद थी। बर्तन मांजते हुए उस काम वाली बाई की हाथों की चूड़ियों की खनक उनको बहुत भाती थी। जी हाँ, जब वो पोछा लगाती थी तब भी उसकी चूड़ियों की खन खन आवाज जो है उन्हें बहुत भाती थी। लेकिन परिवार के कोई भी लोग उनके सुनते ही नहीं थे, तो अम्मा रहती अपनी धुन में बिल्कुल मगन। जी हाँ दोस्तों, तीज से ठीक दो दिन पहले अम्मा कामवाली राजवंती से बोली, ले राजवंती ये पैसे रख ले, अपनी पसंद की चूड़ियां पहन कर आना, श्रृंगार का सामान भी खरीद लाना, तीज के लिए शुभ होता है। जिसके भाग में है उसी के लिए ही सही। और उसके बाद क्या होता है हम आपको बताते हैं इस खूबसूरत सी गीत के बाद। एंजॉय कीजिए।

राजवंती के तो चमन खिल गए पैसे मिलने के बाद। राजवंती तो अगले ही दिन नई चूड़ियां पहनकर खुश होती हुई फिर रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंज रही थी। अम्मा को भी संतुष्टि हो रही थी कि चलो कोई तो सुन लेता है उनकी बात। अम्मा जी अपने धुन में मगन खुश। चलो जिसके भाग में जो था उसी को सही। हालांकि घर की महिलाएं थोड़ी सी चिर गई थी क्योंकि उनका जो स्थान है कुछ हद तक काम वाली ने जो ले लिया था। तो दोस्तों अम्मा जी की मुराद तो पूरी हो गई और आपके दिल के इस मुराद को इस खूबसूरत सी गीत के साथ हम संपन्न करते हुए चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर, यानी कि शाम की महफिल कुछ ही देर में पेश खिदमत करने वाले हैं। तो इस गीत का भरपूर आनंद उठाइए दोस्तों।

0: तो दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत से गीत के साथ ही हमारे आज के यूनिक ड्राइव का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे शाम की महफिल के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

0: की बात।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद। अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखिए, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जी हाँ, शाम की महफिल में बना देने के लिए आए हैं बिल्कुल परफेक्ट एम्बियंस बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ आपके शाम को खास। वैसे भी आज फ्राइडे है और कल वीकेंड है, वीकेंड आज ही से एक्चुअली में शुरू तो हो ही चुका है, तो आपका मूड जो है बहुत ही खास बना के रखे होंगे कि कहीं बाहर जाए अपने किसी खास इंसान के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या फिर घर में बैठे ही जो है आप से कुछ खास बनाए। इस वक्त ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस से लौट रहे हो किसी से बातें करते हुए, या फिर अरुण एफएम को सुनते हुए, या फिर घर पे पहुंच चुके हो और एक कप इश्क भरी गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ अपने किसी खास को याद करते हुए या बातें करते हुए इस वक्त आप अपना वक्त बिता रहे हो। और ऐसे में आपकी शाम को खास बनाने के लिए मैं लेकर आ जाती हूँ आप सभी का मन पसंदीदा गीतों का जो है बिल्कुल जी हाँ प्यार भरा नगमों को। तो दोस्तों आज के इस सुहाने शाम में बात करेंगे बहुत खास गीतों के बारे में, जो कि एक गीत भी नहीं है बल्कि कुछ एहसास है जो दिल को छू जाते हैं। जिसने कभी भी सच्चा प्यार को महसूस किया है दोस्तों, उसी के लिए खास गीत है। जी हाँ, कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में इतने करीब होते हैं कि वो धड़कन में बस जाते हैं। जैसे कि इस गाने की हर लाइन कहती है कि प्यार सिर्फ सामने रहने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि हर पल दिल के पास रहने का एहसास भी है। सोचिए कि अगर हर कोई सांस में शामिल हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना? तो पल पल दिल के पास कोई आपके भी तो रहता ही है। एंजॉय कीजिए दोस्तों।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर बार सुनने पर दिल को नई तरह से ये छू जाते हैं। जी हाँ, ऐसे में होता क्या है, गीत में प्रेम, विरह और इंतजार की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पिरोया जाता है, गया है इनफैक्ट। और जो है ये दिलकश आवाज जब गीतों में जुड़ जाती है तो गीत को अमर बना देती है। तो आइए कुछ पल के लिए यादों और एहसासों की उस दुनिया में खो जाते हैं जहां बस प्यार ही प्यार है और किसी के लिए एक खास तड़प भी है। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत शाम को एक प्यार भरे नगमे के साथ।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे और हमने आपके लिए जो आज की शाम है उसे खास बनाने में कामयाब हुए होंगे। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज है 26 जून, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, और इसके तहत अब आप एक टेलीफोनिक इंटरव्यू सुन

0: सकेंगे। जी हां दोस्तों, कोऑर्डिनेटर परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट डी एडिक्शन सेंटर चिंपू ईटानगर के दिलीप कुमार जी के साथ, और आज के सूत्रधार होंगे मनोज कुमार शर्मा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट के साथ। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, हर वर्ष 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोध दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है। और इसी विषय पर आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिसमें हम नशे की बढ़ती चुनौती, इसके सामाजिक प्रभावों तथा रोकथाम में सरकार, समाज और परिवार की भूमिका पर विस्तार से बात करेंगे। और इसीलिए कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर दिलीप कर्माकर जी। तो सर, रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी ईटानगर के टेलीफोनिक इंटरव्यू प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवालों को शुरू करते हुए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग क्यों मनाया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं?
2: नमस्कार, मेरा नाम दिलीप और मैं परिवर्तन में काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज ये बहुत बड़ा दिन है एक्चुअली, अगर हम देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि 26 जून जो है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये जो दिन है वो 1989 यानी कि 1989 से शुरुआत किया गया है।
1: जी सर।
2: ये इसलिए शुरू किया गया है कि इसके मुख्य जो उद्देश्य जो है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस करना, यानी कि लोगों को जागरूक करना इसके बारे में, जो भी नशा ले रहे हैं तो उसके बारे में जो एविडेंस बेस्ड हम बोलते हैं, यानी कि जो सबूत है जो ट्रीटमेंट में, वैसे सबूत हम लोगों तक पहुंचाए, वो एक उसका उद्देश्य है। दूसरा है कि नशा जब जो भी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जो बोलते हैं, जैसे कि सामाजिक कलंक जैसे हम बोलते हैं,
1: जी बिल्कुल सर,
2: तो वो भी बहुत बढ़ जाता है, तो उसको निपटना भी बहुत जरूरी है। तो उसके वो एक हेतु था कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देके और इससे वो जो कलंक है वो कैसे हम निपट सकते हैं, ताकि लोग अच्छी तरफ से इसका ट्रीटमेंट भी ले लो, वो एक है। और चौथा और सबसे बड़ा जो है, यानी कि नशा जब हम आज देखते हैं, आज के दिन में अगर देखते हैं, वो हम बहुत बार देखते हैं कि वो एक इंडिविजुअल, एक इंसान का प्रॉब्लम है, ऐसा हम समझते हैं। दूसरा हम समझते हैं कि उससे अगर थोड़ा आगे बढ़ के भी जाते हैं तो लगता है कि चलो एक फैमिली का प्रॉब्लम है, पर मैं तो बोलूंगा ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये एक आज के दिन में मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, हमारे जो सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्था है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा समस्या इसके सामने खड़ी है, चुनौती बन के। और ये सिर्फ एक इंसान या एक फैमिली का प्रॉब्लम ना हो कि एक सामाजिक प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है।
1: जी जी।
2: तो उसको निपटने के लिए हम चाहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, सरकार, बेसरकारी जो भी संस्थाएं हैं, वो सब एक साथ में आकर इसको कैसे हम निपटा सकते हैं। हर एक अपना जो भी उनका प्रोग्राम है उसके तहत में जो भी जितना काम कर सकते हैं, हर कोई अगर इसमें 5-10% भी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें हम एक आशा रख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो सकता है करके। इसलिए एक कोलैबोरेटिवली इसमें काम करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है।
1: जी जी।
2: आज के दिन में
1: सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हमें बताया कि जो नशा करते हैं वो सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं बल्कि फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सवाल जरूर करूंगा इससे जुड़ी, लेकिन सर मैं उससे पहले आप जानना चाहूंगा कि आप जिन्हें इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि आप परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर हैं।
2: Yes.
1: तो सर मैं जानना चाहूंगा ये परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट क्या है और ये क्या करता है?
2: परिवर्तन एक्चुअली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
1: जी जी।
2: जो 1991 में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी।
1: ओके सर।
2: तो 2011 में हमने पहला एक प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया था, वो LGBRMH लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोनो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तेजपुर में जो है
1: जी जी जी
2: उनके साथ में कोलाबोरेट करके हमने कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस, यानी कि जिनको जो मानसिक बीमारी है तो उनको लेकर

0: कम्युनिटी में उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है
1: जी
0: उसके बारे में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 2011 में
1: जी जी
0: तेजपुर में, तब से यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमने इसके काम की शुरुआत की परिवर्तन संस्था की।
1: ओके सर।
0: परिवर्तन जो संस्था है जो दो मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं, एक जो है मन की बीमारी, दूसरा है नशा की बीमारी।
1: जी जी जी
0: मैं नशा को नशा की बीमारी बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक बीमारी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं इसको बीमारी समझते नहीं है,
1: जी जी
0: इसको एक बोलते हैं एक तो खराब आदत या क्रिमिनल माइंडसेट से देखते हैं, पर ये एक बीमारी है
1: ओके
0: और जिसका इलाज होता है।
1: जी जी
0: तो परिवर्तन जैसे कि दो मुद्दों पे काम कर रहे हैं और ज्यादा जो परिवर्तन का काम रहा है वो कम्युनिटी बेस्ड,
1: ओके
0: इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो लोगों को मन का बीमारी या नशा का बीमारी उनको कम्युनिटी में हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।
1: ओके
0: जैसे ही हमने देखा कि परिवर्तन का मेन अप्रोच पहले से ही रहा है कि बेस्ट क्वालिटी सर्विस जो है
1: जी
0: वो हम रूरल पार्ट्स या जहां पे दूर दूर तक इसकी कोई सर्विसेज नहीं है
1: जी
0: वहां पे हम कैसे लेकर जा सकते हैं, वो हमारा मेन मकसद रहा था। तो हमने देखा कि इवन 2019 में
1: जी
0: पहली बार हमें एक मौका मिला था कि बोमडिला जहाँ पे एक प्रोग्राम करने के लिए,
1: जी
0: जहाँ पे एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए हमें इनविटेशन आया था,
1: जी
0: तो उसके बाद में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमने बात करके वहां पे भी बहुत सारे जो लोग हैं मन की बीमारी के रोगी जो हैं जो तेजपुर आ रहे थे, जो आना जाना उनके लिए बहुत मुसीबत हो रहा था,
1: जी
0: तो वहां के हॉस्पिटल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला कि आप लोग यहाँ पे अगर आपका कुछ सर्विसेज शुरू कर सकते हैं
1: जी
0: तो हमारे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम 2019 से लेकर वहां पे हमने काम शुरू किया, यानी कि अरुणाचल में हमने हमारी सर्विसेज एक्सपांड की,
1: जी जी
0: और 2022 में हमने जैसे कि पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो अरुणाचल में हमने चिंपू ईटानगर में हमने शुरू किया।
1: ओके सर।
0: तो ऐसी इसकी शुरुआत हो गई यानी कि परिवर्तन की। हाँ, और परिवर्तन का जो अभी नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा काम चल रहा है
1: जी
0: तो और प्रोग्राम लीड के हिसाब से मैं काम देख रहा हूँ।
1: ओके सर। सर
0: यस
1: आप लोग क्योंकि आपका इंस्टीट्यूशन ही बोलता है कि नॉट फॉर प्रॉफिटेबल, तो
0: यस
1: मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग प्रॉफिट को ना देखते हुए लोगों की मदद करने के लिए खुद आगे आए। और आपने मुझे लग रहा है आपका एक्सपीरियंस जो रहा है स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में जहां पे आपको हॉस्पिटल से लोग बुलाते हैं और वहां पे आपकी सर्विसेस को लेते हैं, तो सर आपको सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ऐसे अचीवमेंट्स भी पा रहे हैं। पर सर अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो बताया कि जो नशा की बीमारी है वो तो समझ में आता है सर, नशा को हम बीमारी कह सकते हैं, लेकिन जब आप बोलते हो मन की बीमारी सर, तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को आप थोड़ा और इसे एलाबोरेट कर दे कि मन की बीमारी एक्चुअली में होती क्या है।
0: हाँ, ये बहुत आपने सवाल एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल पूछा,
1: जी
0: क्योंकि इसके बारे में एक्चुअली ना मन जब हम बोलते हैं
1: जी
0: या माइंड जब बोलते हैं वो सबके पास तो होता है,
1: एग्जैक्टली सर
0: और एक इंसान को चलाने के लिए मन के सिवा कुछ है नहीं है एक्चुअली,
1: जी जी
0: और उसके बारे में ऑलमोस्ट ना बराबर की बात होती है,
1: हाँ जी
0: कहीं
1: सर।
0: पे भी इसके बारे में बात होती नहीं है। हम हमारा शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे ही कभी हमने, मैं आपको भी पूछूंगा कि आपने कभी मन का ख्याल किया है क्या, मन का केयर किया है क्या आपने, या मन का केयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो शायद आपका भी जवाब शायद ना के बराबर ही आएगा।
1: सर पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है मन का ख्याल रखना। जी जी
0: राइट। तो
1: जी
0: एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारा जब हम ओवरऑल ह्यूमन बॉडी बोलते हैं कि जो एक इंसान बोलते हैं,
1: हाँ जी सर
0: तो यानी कि इसमें दो पार्ट को हम अगर डिवाइड करते हैं, एक जो रहेगा शरीर हो गया,
1: जी
0: दूसरा हो गया मन हो गया,
1: जी
0: जो ब्रेन माइंड बोलते हैं हम, ये हो गया।
1: जी
0: तो इसके दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा जो मन है यानी कि जो माइंड है, जो हमारे सोच विचार को लेकर, यानी कि अभी मुझे आपको कौन से सवाल का क्या जवाब देना है,
1: हाँ जी
0: या मुझे जो प्लानिंग करने के लिए, यानी कि ये सब हमारा जो रहता है
1: जी
0: वो माइंड से मैसेज आता है।
1: ओके सर जी
0: अभी जैसे कि शरीर क्या करता है, जैसे कि शरीर रिस्पॉन्ड कर सकता है, पर जो मैसेज आपकी जो आनी होती है वो मन से आनी होती है, माइंड से आनी होती है,
1: जी
0: ब्रेन से आनी होती है। पर ये क्या होता है कि इसमें मन को हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है जैसे कि अगर इंसान चलता है तो शरीर से चल रहा है, पैर से चल रहा है,

0: कोई बात कर रहा है तो मुंह से बात कर रहा है, बट ये सब जो जो इसके पीछे जो वर्क काम हो रहा है ना,
1: जी
0: कब क्या बोलना है, कब कहाँ पे जाना है, मुझे आज पढ़ाई करना है या मुझे आज इंटरव्यू लेना है,
1: जी जी
0: यानी कि बैक ऑफ द माइंड, यानी कि हमारा ब्रेन जो है ये सब प्रोसेस करता है, एक ट्रांसफॉर्मर की तरह है वो,
1: ओके
0: जहाँ पे सब हमारे प्रोसेसिंग वहां से हो जाती है।
1: जी
0: तो जैसे कि मन तक बीमारी जैसे आपने मेंशन किया था, जो बोला गया था,
1: जी
0: तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला कि शरीर जैसे है वैसे मन है, तो इंसान का शरीर बीमार पड़ता है वो हमें पता है।
1: यस सर
0: सिंपल से अगर बात बोलेंगे तो जैसे कि सर्दी, बुखार, खांसी या बाकी अन्य कोई भी बीमार हो सकती है,
1: जी जी
0: ये शरीर की बीमारी हो गई है। जैसे ही शरीर बीमार पड़ता है वैसे ही मन भी बीमार पड़ता है,
1: ओके
0: जो बहुत बार हमें पता भी नहीं है ये मन है कहाँ पे, मन की बीमारी क्या है, इसके बारे में लोगों को बहुत बार जानकारी नहीं रहती है।
1: जी
0: तो मन बीमार पड़ता है तो वो हमें कैसे देखना है, इसके बारे में अगर हमें जानना है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जैसे कि हर दिन जो रहता है,
1: जी
0: सिंपल अगर मैं बोलूं तो कभी कभी मन हमारा बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी हमारा मन जो रहता है वो उदास रहता है।
1: जी सर जी बिल्कुल
0: घर में जैसे कि कभी किसी ने जो हम मन से जैसे सोचते हैं वैसे नहीं हुआ तो फिर से मन उदास होना,
1: ओके यस सर
0: तो ये यानी कि उदास होना, ये यानी कि जनरली सब कोई हर दिन फेस करते ही है। सुबह में अगर जैसे कि बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, पर सुबह दोपहर होते होते कुछ ऐसा घटना घटी, जैसे कि आपको कहीं पे जाना था, बहुत बारिश हो गया, नहीं जा पाया, तो मन उदास हो गया।
1: ओके सर यस
0: तो यानी कि ये मन उदास होना तो उसके बारे में ये होगा। पर इसकी बीमारी हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में कोई ऐसे इवेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि फेलियर होना, अगर जैसे कि आपने एग्जाम दी तो
1: जी
0: पास
1: जी
0: नहीं हुए, अभी आजकल के यंगस्टर्स में जैसे कि अगर हम बोलते हैं लॉ ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ये भी बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं,
1: जी जी
0: कोई करियर में फेल हो गया है, किसी का जॉब लॉस हो गया है, किसी अपने करीबी इंसान की डेथ हो गई है, या कोई कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं, यानी कि ये जैसे मुद्दे जब हमारे लाइफ में होते हैं ना, तो
1: जी
0: मन
1: सर
0: हमारा उदास रहता है।
1: जी
0: तो मन उदास रहने के बाद इसके लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी किसी को लगता है कि यानी कि खाना खाने का मन नहीं होना, किसी को
1: अच्छा
0: नींद में तकलीफ आना यानी कि नींद नहीं आना,
1: जी जी
0: किसी को रोने का ऐसा मन करना, किसी के छाती में धब धब ऐसा होना, ऐसा पल्पिटेशन बढ़ जाना, सांस तेज लेना शुरू हो जाना, या कुछ काम जो पहले उनको इंटरेस्ट लगता था वो काम में उनको इंटरेस्ट नहीं लगना, दिलचस्पी नहीं लगना,
1: जी जी
0: किसी के साथ बात करने के लिए मन नहीं करना, जो पहले बहुत अच्छी तरफ से कुछ काम कर रहे थे वो काम में उनका अभी फिर से मन नहीं लगना,
1: जी जी
0: ये जो बातें हैं कि ये लक्षण है, ये सिम्टम है,
1: अच्छा
0: जो कुछ मन की बीमारी हो रहे हैं ऐसा हम उनसे एक अंदाज लगा सकते हैं।
1: अच्छा
0: पर जिसको भी ये लक्षण दिखाई दिए इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसको मन की बीमारी हो गई करके,
1: जी जी
0: पर ये लक्षण हो सकते हैं।
1: ओके
0: तो अगर ये लक्षण है तो इसके बाद में जैसे कि हम वो उसका फर्दर प्रोसेस, जैसे कि हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं
1: जी
0: उनसे हमें कंसल्ट करना है।
1: ओके
0: हाँ, ये जैसे कि अभी मैंने जो बोली हुई है, यानी कि अगर हम मन का बीमारी भी अगर हम डिवाइड करते हैं ना,
1: जी जी जी
0: तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक रहेगा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स,
1: जी
0: जो ज्यादातर पाई जाती है, यानी कि कॉमनली पाई जाते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं। शायद आपने भी नाम सुना हुआ होगा कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, ऐसे लोग बोलते हैं,
1: जी
0: ये
1: सर
0: बीमारी आती हैं।
1: जी जी जी
0: दूसरी है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, इसमें जैसे कि स्किजोफ्रेनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है,
1: जी
0: और इसके जो लक्षण जो होते हैं वो लक्षण है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के, जैसे कि अकेले अकेले में बात करना,
1: जी सर
0: किसी कोई सामने में है नहीं है बट वो किसी से बात करना, तो या कपड़ा ठीक तरह से नहीं पहनना, कभी अकेले हंसना, अकेले रोना, ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो बोलते हैं, तो
1: जी
0: इसके लक्षण हैं। तो
1: अच्छा
0: अगर
1: अच्छा
0: ऐसे लक्षण जब हम पाए जाते हैं, यानी कि ये जनरली हमारे जो भी लोग हैं उनको, यानी कि वो इजीली रिकॉग्नाइज तो कर पाते हैं
1: जी
0: कि ऐसे लक्षण तो हो गए हैं, पर ये लक्षण किसके हैं वो किसी को पता नहीं रहता है,
1: ओके
0: इसलिए इसमें लोग ट्रीटमेंट में बहुत देरी से आते हैं।
1: अच्छा जी जी जी
0: कभी का बात लोग बोलते हैं ये तो

0: मना कर रहा है, ऐसा करके ये करते हैं। तो जनरली हम क्या चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जब लोगों के पास सही जानकारी रहेगी, तो जैसे मैंने बोला था कि अगर ऐसे कोई लक्षण अगर दिखाई दिए हैं किसी इंसान में,
1: जी
0: तो उनको कहाँ पे जाना है, तो वो जैसे हम बोलते हैं इनके जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए,
1: जी
0: काउंसलर्स हो गए,
1: हाँ जी सर
0: तो उनके पास से हमें सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है वो समझने के लिए। और अभी आजकल यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि टेलीमानस करके एक हेल्पलाइन शुरू की है,
1: यस सर यस सर
0: उसका नंबर है 144416, जहाँ पे 24x7 सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं।
1: जी
0: जो लोग कभी भी इसके बारे में ऐसा कोई कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, तो उनसे फोन करके वो पूछ सकते हैं,
1: जी
0: और वैसे वो लोगों को जहाँ पे भी वो बोलेंगे कि हाँ आप इनको कोई हॉस्पिटल में दिखाओ,
1: जी
0: सिविल हॉस्पिटल में दिखाओ, या पीएचसी लेवल पे दिखाओ, या आप स्टेट लेवल के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है वहां पे दिखाओ, तो वैसे हम उनको ट्रीटमेंट में ला सकते हैं।
1: ओके
0: ये ओवरऑल मन का बीमारी के बारे में, यानी कि ऐसे बहुत सारी अलग अलग मन की बीमारियां हैं,
1: जी जी जी
0: तो वो हम शायद और कभी एक दिन उसके
1: बिल्कुल
0: बारे
1: सर
0: में
1: उस पे
0: भी बात
1: मुझे
0: कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: सर मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इस पे बात कहा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है सर। लेकिन
0: हाँ
1: मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो टेलीमानस का जो हमें नंबर बताया था दोबारा हमारे लिसनर्स के लिए एक बार फिर से बता दे।
0: ये नंबर है 144416।
1: 16 ना, तो मतलब मन की बीमारी से जुड़ी आपको कोई भी इशू लग रही है तो आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं।
0: हाँ, मन
1: जी
0: का हो या नशा का भी हो,
1: ओके
0: तो इससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपको
1: जी
0: सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा।
1: ओके सर
0: लास्ट में मैं हमारा ऑफिस का भी एक नंबर मैं शेयर करूंगा, जो
1: जी
0: 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम भी आपको अच्छी तरफ से जो भी गाइडेंस चाहिए हमसे,
1: जी जी जी
0: वो हम चाहते हैं कि लोगों को सही जानकारी तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं इसके लिए।
1: ओके ओके सर जो चिंपू में आपका जो ऑफिस है वहां पे ना।
0: हाँ
1: जी ओके सर कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, जैसे मन की बीमारी और नशे की बीमारी ये तो बहुत वास्ट टॉपिक हो गई, तो अब
0: राइट,
1: मैं इस टॉपिक पे आने से पहले हम बात कर रहे थे सोसाइटी और फैमिली को किस तरह से इफेक्ट करता है, तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि नशा करना जैसे आपने बताया बीमारी है, धीरे धीरे उसका लत बढ़ जाता है, तो ये सोसाइटी और फैमिली को किस तरह से इफेक्ट करने लगता है।
0: एक्चुअली देखने के लिए जाते हैं कि नशा जो है,
1: जी
0: एक तो पहले यानी कि आप लोग मानते नहीं है नशा एक बीमारी है करके,
1: जी जी
0: तो हमें लगता है कोई एक आदत है, अगर ये बड़े बड़े सब्सटेंसेस लेना शुरू करते, नशा लेना शुरू करते, जैसे कि हीरोइन, गांजा, चरस,
1: जी
0: तो हमें लगता है, या ब्राउन शुगर, तब हमें लगता है यानी कि ये क्रिमिनल है, ऐसा करके यानी कि क्रिमिनल की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें।
1: जी सर
0: तो एक्चुअली क्या है, कोई भी नशा, हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार का नशा जो है, जो सब्सटेंस जो हम बोलते हैं,
1: जी
0: वो नशा को हमें पहले तो नशा बोलना चाहिए।
1: ओके जी
0: नशा छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आज के दिन में भी अगर हम देखेंगे कि ग्लोबली इवन हम लाइक बहुत बार लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं, और ये सबको पता भी है, निकोटीन का प्रमाण जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड,
1: अच्छा
0: चाहे उसमें सिगरेट आता है, टोबैको आता है, ये गुटखा जो आता है, ये सब आता है उसमें, और उसकी वजह से जो है तो उसमें अराउंड 7 मिलियन जो है, ऑलमोस्ट 70 लाख लोग पर ईयर
1: जी
0: इससे डेथ हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे, यानी कि ये घर में बैठकर, बच्चों के सामने बैठकर हम वो कंज्यूम करते हैं,
1: जी
0: तो वो एक तो है यानी कि, पर अभी हम क्या सोचते हैं कि कोई भी नशा हो, नशा नशा है
1: जी
0: और नशा खराब है,
1: जी जी
0: वो हमें पहले जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, ये जब एक बार नशा हम शुरू करते हैं, तो नशा उसी को बोलते हैं जो बार बार करने का मन करना और ज्यादा से ज्यादा करने का मन करना। अगर
1: अच्छा
0: पकड़ लीजिए, अभी आपने खाना खाया है पेट भर के,
1: जी
0: उसके आधा घंटा बाद में मैं आपको कितना भी अच्छा खाना खिलाऊं, तो आप बोलेंगे नहीं चाहिए ऐसा करके, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है वहां पे।
1: जी जी
0: पर नशा क्या है, अगर आपने अभी कितना भी नशा अगर लिया हुआ है, अगर आपको 5 मिनट के बाद

0: कोई ऑफर कर रहा है तो उसका आप ना नहीं बोलेंगे।
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: नशा
1: अच्छा
0: एक ऐसी यानी कि ये बन जाता है, एक आदत ऐसी बन जाती है कि वो बार बार करे और ज्यादा से ज्यादा करे,
1: अच्छा
0: तो
1: उसको जरूरत लगने लगता है।
0: जरूरत लगने लगता है।
1: अच्छा जी।
0: तो इसमें भी क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हम देखते हैं ये शुरुआत जो होती है, यानी कि उसकी शुरुआत होने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर एक बार उसकी अगर लत लग गई,
1: जी
0: उसका अगर वो टेस्ट लग गया, तो वो धीरे धीरे होके उसकी वो आदत बन जाती है और वो हर समय यानी कि वो नशा ही करने का वैसे मन करना, ये उनका एक रूटीन बन जाता है।
1: जी
0: तो जैसे कि शुरुआत तो इंसान एक करता है, यानी कि अकेले में करता है, पकड़ लीजिए एक इंसान कर रहा है, पर वो क्या है, यानी कि हमारे इंडिया में आज कोई भी किसी भी प्रकार का नशा जब हम बोलते हैं, तो वो करने के बाद धीरे धीरे एक तो उनके शरीर के ऊपर तो असर कर ही रहा है,
1: जी
0: साथ में उनके मन के ऊपर असर कर रहा है,
1: जी सर
0: यानी कि अगर नशा नहीं मिलने से जैसे कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, रेस्टलेसनेस जैसा होना,
1: जी जी
0: या ड्रग्स अगर लेते हैं तो उनको शरीर में दर्द होना, पसीना आ जाना, यानी कि ये लक्षण दिखाई देने शुरू शुरू हो जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो यानी कि एक बार जब यानी कि खाना शुरू हो जाता है नशा,
1: जी
0: तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके ऊपर, यानी
1: जी जी
0: कि हर समय तो नशा चाहिए चाहिए। अगर वो नशा नहीं खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो उसके शरीर के ऊपर या मन के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है।
1: जी
0: ये तो शरीर और मन यानी कि वो इंटरनल एक इंसान के ऊपर हो गया।
1: हाँ जी सर
0: दूसरा असर जो है वो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें, नशा लेने के लिए बहुत पैसा खर्च है, कोई अगर कहीं पे काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है।
1: जी
0: हालांकि हमारे यहाँ पे एक गलत फहमी है, यानी कि नशा करने के बाद काम करने में मजा आना ये सब है, यानी कि ये सब झूठ है,
1: जी
0: ये सब सही नहीं है। हम देख रहे हैं अभी, मुझे भी ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस स्पेशली कम्युनिटी एडिक्शन में भी है,
1: जी
0: जहां पे मैं देख रहा हूँ, पहले तो लोग बोलते हैं हम मुझे नशा खाने से ये फायदा होता है वो फायदा होता है, पर 1-2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद मैं देख रहा हूं तो उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तो वो उनको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, उनका काम जो करते हैं काम में लॉस हो जाना शुरू हो जाता है, काम में कभी जाना कभी नहीं जाना,
1: जी
0: और कुछ बीमारी शुरू हो जाना, शरीर की बीमारी भी शुरू हो जाना उसकी वजह से, और एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है।
1: जी जी
0: फैमिली में जैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस तरफ से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, जो अगर एक कोई पेरेंट है तो बच्चों का ख्याल उस तरफ से नहीं कर पाते हैं, या अगर घर में बच्चा है तो घर में अपने मम्मी पापा को देख के बच्चा लोग सीख जाएंगे।
1: जी जी
0: नशा करने की वजह से घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाते हैं, तो या घर का भी ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है,
1: जी
0: तो ये फैमिली का भी बहुत ज्यादा लॉस है।
1: जी
0: अगर फैमिली छोड़ के अगर हम थोड़ा बाहर जाते हैं तो वो हमारे यानी कि एज अ सोसाइटी का भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है।
1: जी
0: नशे से जुड़े हुए एक्सीडेंट तो आपको शायद पता ही है,
1: जी
0: बहुत ज्यादा
1: बिल्कुल
0: बढ़ रहे हैं हमारे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे
1: जी जी
0: देश में, प्लस झगड़े वैसे बहुत ज्यादा बढ़ भी रहे हैं, प्लस क्राइम हमारे इसमें वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं शॉकिंगली। यानी कि अभी मैं जब ईटानगर में भी किसी लोगों से भी बात करता हूँ, यानी कि अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा जो क्राइम या चोरी जो हो रहे हैं
1: हाँ जी
0: स्पेशली,
1: जी जी
0: तो वो बहुत ज्यादा जो चोरी है वो नशे से जुड़ी हुई चोरी अभी सामने आ रहे हैं।
1: जी
0: यानी कि ये हमें एक सबको सोचने की जरूरत है, क्या ये सिर्फ एक इंसान का प्रॉब्लम है या समाज का प्रॉब्लम है,
1: एग्जैक्टली
0: तो मैं
1: सर
0: बोलूंगा यानी कि ये एक बहुत बड़ा समाज का प्रॉब्लम है, तो हमें सब लोगों को इसमें साथ में आना पड़ेगा,
1: जी जी
0: और नशे के रियल लाइफ में होने वाले नुकसान वो क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। नशा अच्छा है करके बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर सही में ये अगर अच्छा है तो उसका क्या अच्छा हुआ है या किसको अच्छा हुआ है वो तो कोई बोलते नहीं है,
1: उसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक।
0: कोई प्रूफ नहीं
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और एविडेंस तो हमारे पास है, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हुए हैं,
1: जी जी
0: फैमिली में बहुत सारी बीमारी हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, क्राइम हुए हैं,
1: जी
0: जो एविडेंस हम सबके सामने है, बट वो कभी ना कभी हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, हमें लगता है हमारे घर में कोई नशा नहीं कर रहा है ना,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: दूसरे

0: दूसरों के घर में हमारी हमें क्या चिंता करनी है, ऐसा करके हम सोचते
1: जी।
0: इसको हम टाल देते हैं। पर नशा सिर्फ नशा करने वालों को अफेक्ट करता है, नहीं ऐसा नहीं है। जो नशा नहीं करता है, जैसे कि पकड़ लीजिए आप या मैं,
1: जी
0: कभी रात में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं
1: यस सर
0: और अगर किसी को नशा लेना है
1: जी
0: और उनको पास पैसा नहीं है, तो वो कभी हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसका हम ख्याल कभी करते नहीं है,
1: ओ
0: तो वो भी
1: जी
0: हमें करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी अच्छा सर, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक होती है सर सच में। जैसे हम बात करते हैं नशे की लत की, तब यहाँ पे यूजुअली युवा आ जाते हैं, तो उनके हेल्थ एजुकेशन और फ्यूचर को तो वो खुद डिस्ट्रॉय करते ही है, ये तो हमें
0: बराबर।
1: पता है, और उनको शायद समझना में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर इसमें जो हमारे राज्य सरकार होते हैं और जो नागरिक होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: देखो, अगर आप अगर बोलेंगे कि हमें ये नशा से निपटने के लिए अगर किसका रोल और कैसे होना चाहिए अगर बोलेंगे, तो मैं
1: जी
0: इसमें बोलूंगा जितने भी, यानी कि सरकार तो ऑफ कोर्स यानी कि है, जो हमारे सेंट्रल लेवल से, स्टेट लेवल या सेंट्रल से
1: जी
0: कुछ पॉलिसी या जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस चाहिए उसका तो अवेलेबिलिटी कर सकते हैं।
1: जी
0: दूसरा जो है, जो हमारे यानी कि सब सिविलियंस में बोलूंगा, यानी कि हर एक की जिम्मेदारी है
1: जी
0: ये नशा से निपटने के लिए। अगर हम एक पिरामिड अगर देखेंगे, तो उसमें अगर हम सबसे नीचे का स्तर देखेंगे, जैसे कि ज्यादा जो लोग हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो नशा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो मिक्स्ड पॉपुलेशन है हमारा।
1: जी
0: तो मिक्स पॉपुलेशन में देखेंगे तो ज्यादा तो लोग तो कोई नशा तो नहीं ले रहे हैं।
1: जी
0: तो जो नशा नहीं ले रहे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए, वो नशा ना ले, उसके लिए हमें सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए कि
1: जी
0: नशा के होने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं।
1: जी सर
0: और उसके बाद में अगर वो कोई भी बाय चॉइस अगर कुछ करते हैं, तो वो उनकी मर्जी से करेंगे।
1: ओके ओके
0: पर जो भी लोग फंसे हुए हैं, तो उनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको तो मैं सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा।
1: जी
0: अगर हम आज टीवी पर भी देखते हैं, अगर कोई एड देखते हैं या आप सोशल मीडिया मोबाइल देखते हैं, जहां पे भी देखेंगे, तो वहां पे हमारे जो सेलिब्रिटी हम मानते हैं या आइडल मानते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो वो एड जो करते हैं, तो ये जो इसका असर है, यानी कि जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों को कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को प्रोमोट कर रहे हैं कि आप कोई ना कोई तो सब्सटेंस करो ऐसा करके।
1: जी
0: पर सब्सटेंस ना करो ऐसा करके बोलने वाले हमारे पास बहुत ही कम ऐसे कोई ऐड रहेंगे, या अगर कोई जैसे कि हमारी जैसी संस्थाएं या बाकी जो संस्थाएं, बहुत कम होंगी
1: जी
0: जो लोगों तक जाए, उनको समझाए कि नशा नहीं करना ऐसा करके। तो
1: जी जी
0: एक तो हमें पहले ही, यानी कि कोई भी नशा छूने के पहले उनको वहां से रोकना हमें बहुत जरूरी है।
1: जी
0: दूसरा ये है कि जो लोग फॉर एग्जाम्पल जो नशा कर रहे हैं, जैसे कि कोई पेरेंट्स भी अगर नशा कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो उनके घर में भी बच्चों के सामने ना करे।
1: जी जी जी
0: और नशा भी वो लोगों को समझना जरूरी है कि ये नशा एक बीमारी है, तो इसका मैं इलाज करके मैं ठीक हो जाऊंगा, या उनको ठीक करने के लिए हमें वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि
1: जी
0: परिवर्तन जैसी संस्था है जो नशा कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम
1: जी
0: जैसी संस्थाएं हैं जो नशा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो उन जैसी संस्थाओं का इसमें जिम्मेदारी रहेगी।
1: जी
0: हाँ हाँ हाँ
1: लेकिन सर आपने अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोली, जो मैं मेरे लिसनर्स के लिए भी दोहराना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि घर में, फैमिली में नशा नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शराब की दुकान में भेजते हैं, जो तंबाकू खरीदने को भेजते हैं, ये भी तो एक तरह से गलत ही है, राइट? जी तो सर ये सब इन पे हमें इम्पोर्टेंटली ध्यान देना चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बॉर्डर एरियाज में ज्यादातर ये ट्रैफिकिंग की चुनौतियां क्यों ज्यादा बढ़ जाती है?
0: जैसे आपने बोला था, सरकार का हो या बाकी इसका।
1: ओके
0: अच्छा,
1: जी
0: अब भी अगर हम तीन जो इंस्टीट्यूट है, तीन इंस्टीट्यूट जो है, जैसे
1: जी
0: कि हो गया एक तो लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि उसमें कानून व्यवस्था आती है,
1: जी
0: पुलिस आते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशन हैं जो रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
1: जी
0: ये तीन लोग अगर साथ में आकर काम करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
1: ओके सर
0: पुलिस का रोल रहेगा सप्लाई कम करो। हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं सप्लाई तो कम करने के लिए पुलिस कोशिश कर रहे हैं,
1: जी जी
0: पर बाकी जो, जैसे कि अगर कोई किसी को नशा नहीं मिल रहा है, तो उनको रिहेबिलिटेट या सर्विस कैसे प्रोवाइड किए, तो जैसे कि सरकार या

0: जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या जो रिहेब सेंटर चला रहे हैं उनको साथ में आना बहुत जरूरी है, और इसकी एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको जो भी पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट और सिवियर पनिशमेंट हो जाएगा, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा।
1: जी बिल्कुल सर।
0: दूसरा दूसरा सवाल का, जैसे आपने बोले थे बॉर्डर स्टेट्स में ये ज्यादा
1: ज्यादा
0: इश्यूज
1: जी
0: हो रहा है
1: जी
0: अभी, जैसे कि हम इवन पंजाब में भी काम कर रहे हैं, जो पंजाब के बारे में हमने बहुत पहले सब लोगों ने सुना हुआ था, पंजाब में बहुत ज्यादा नशा चल रहा है,
1: जी
0: तो वैसे ही अगर आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अरुणाचल से लेकर जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब, तो जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज हैं वहां से इसकी तस्करी ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: जो अगर हम देखते हैं तो बॉर्डर एरिया से यानी कि वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके इसका सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी अगर देखेंगे, ये जो हमें पता है कि स्पेशली यानी कि म्यांमार उस साइड पे हम बोलते हैं जो गोल्डन ट्रायंगल जो बोलते हैं,
1: जी
0: जहां से ये नशा का सप्लाई आ रहा है यानी कि
1: जी सर
0: इलीगली आ रहे हैं
1: जी
0: वो,
1: जी
0: तो उसकी वजह से ये जो हमारा जो टारगेट भी है वो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स को एक तरह का यानी कि अगर एक बार नशा लग गया पकड़ लीजिए तो इसमें बाहर आना बहुत ही बड़ी चुनौती है।
1: जी
0: और जो भी इंटरनेशनल माफिया पकड़ लीजिए इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ये बहुत बड़ा आज के दिन में मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा इशू है कि इंटरनेशनल जो भी बॉर्डरिंग स्टेट्स है हमारे वहां पे नशा के प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।
1: जी
0: ये हमारे जो आने वाले कल के फ्यूचर हम बोलते हैं जो आज के युवा हैं,
1: जी
0: तो वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं,
1: जी जी
0: तो ये हमें यानी कि सोचने पे मजबूर करने वाली बात है एक्चुअली, कि हमें यहाँ से आगे के हमारे जो युवा हैं उनको हमें कैसे रोक सकते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो जहां से भी तस्करी हो रही है इसकी,
1: जी
0: तो इसको रोकने के लिए यानी कि कड़ी से कड़ी यानी कि कैसे हम नियम या कानून व्यवस्था या उसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे ले सकते हैं,
1: जी
0: तो इसके ऊपर भी आज काम करना बहुत ही जरूरी है। अगर आज काम नहीं करेंगे, मैं आपके सामने बोल रहा, आने वाला जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स है इतना खराब कंडीशन होने वाला है यानी कि हम बोल नहीं सकते हैं, ऐसा
1: जी
0: कंडीशन खराब हो रहा है।
1: ओके हमारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी है बहुत वास्त, तो काफी सारी बातें यूं ही निकल जाती हैं, लेकिन सर समय की कमी होने की वजह से मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूँ। सर प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने चिंपू में जो आपका ऑफिस है डी एडिक्शन सेंटर का, उसका नंबर शेयर करें और आपके तरफ से हमारे यूथ्स को, हमारे जनता को, जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज जरूर दें। जी
0: तो अभी जैसे कि हमारा जो चिंपू में जो सेंटर है
1: जी
0: जहाँ पे भी हम एक हेल्पलाइन चला रहे हैं, यानी कि वो कभी भी आप उसमें फोन कर सकते हैं,
1: जी
0: वो हमारे एक्चुअली वहां के जो इंचार्ज हैं पूर्णा पावे करके, उनका ही नंबर है वो,
1: ओके सर
0: और वो नंबर है 7002255411। तो मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा
1: जी
0: हूँ,
1: बिल्कुल सर
0: 7002255411
1: जी
0: ये नंबर है, ये नंबर पे आप कभी भी 9 से 5 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: जी जी
0: अगर कुछ मिस कॉल भी अगर आ गया है तो आपको कॉल बैक इस पे जरूर आ जाएगा। दूसरा मेरा युवाओं के लिए यही बोलना है कि जैसे कि बहुत बार मैं अभी युवाओं के साथ काम कर रहा हूँ, हम पूरे अरुणाचल में एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने हैं 10 से 12 कॉलेजेस में हम काम करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, और ये
1: जी
0: दो मुद्दों को लेकर ही हम काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, मन का बीमारी या नशे से कैसे हम दूर रह सकते हैं इसके ऊपर। तो
1: जी
0: आज के युवाओं के लिए मेरा इतना ही संदेश रहेगा कि जिंदगी में जो है यानी कि जिंदगी तो बहुत ही अच्छी है,
1: जी
0: लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल,
1: जी
0: तो इसको और ब्यूटीफुल करने के लिए नशा का सेवन कभी भी नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग हैं या बहुत ऐसे सिस्टम हैं जहां पे यानी कि नशा को प्रमोट करेंगे, पर वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हर एक इंसान की जिम्मेदारी रहेगी कि चाहे कोई भी अच्छा बुरा क्यों ना हो, या कोई भी अगर आके हमें बोलते भी हैं अगर नशा करने के लिए, तो जो भी नशा है जो हमें समझ में आता है नशा है, तो उससे हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, अपनाना नहीं है।
1: जी
0: दूसरी बात, अगर कोई भी हमारे युवा आज के दिन में अगर इसमें अगर फंसे हुए भी हैं, तो आप हमारे जो दिए हुए नंबर या जो मैंने टेलीमानस का नंबर शेयर किया हुआ था
1: जी
0: उनसे सही जानकारी लेकर आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करो, एक और अपना जो कीमत

0: आपके जीवन है, लाइफ है,
1: जी
0: तो उसको और सुनहरा बनाने की आप कोशिश कर देना। और हम हमारे तरफ से, परिवर्तन की तरफ से स्पेशली, हम हमेशा ही तैयार रहेंगे।
1: जी
0: जिसको जो हम बोलते हैं काउंसलिंग या बाकी मोरल सपोर्ट की, जब भी जरूरत पड़े आप हमें कभी भी बेझिझक फोन कर सकते हैं।
1: जी
0: हम आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे। नशा से यानी कि ना हम नशा किसी को देंगे भी और ना खुद अपनाएंगे।
1: जी
0: अगर ये अगर हम डिसाइड करेंगे तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर जो है, जो यंगर जनरेशन है, वो अच्छी तरफ से अपना जो लाइफ है, लाइफ को और ब्राइट बनाने के लिए काम कर सकते हैं।
1: जी
0: और जैसे मैंने बोला है, लाइफ इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। वो कैसे ब्यूटीफुल बनाना है ये हम लोगों के ऊपर में है। कभी ऊपर नीचे अभी अगर कभी हो गए हैं तो बेझिझक आप हेल्प सीख करो। हेल्प सीकिंग इज एक्चुअली स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। वो
1: जी
0: बोल के मैं खत्म करूंगा।
1: ओके सर, आप आज हमसे जुड़े और इतनी सारी जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: माय प्लेजर सर।
1: जी थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, उम्मीद है कि कार्यक्रम से आपको बेहद फायदा हुआ होगा। आइए हम सब मिलकर नशे से दूर रहें और नशे की लत को दूर करें। फिलहाल मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक साक्षात्कार दिलीप कुमार, कोऑर्डिनेटर परिवर्तन के साथ, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर। जी हाँ दोस्तों, FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में यानी कि शाम के ठीक 6:30 का वक्त रहेगा आदि समाचार का। बने रहे अरुण FM के साथ, सुनते रहे अरुण FM को।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, या आकाशवाणी का अरुण एफएम है, अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे बस कुछ ही देर में आप सब आनंद

0: बैठा पाएंगे आज के कलाकार के प्रोग्राम के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार के सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट होता है जहां हम फिल्मी जगत से जुड़े हुए बिल्कुल नामी ग्रामी जो है अदाकार, फनकार, संगीतकार, गीतकार, फिल्मी जगत से जुड़े हुए सभी सुपरस्टार्स हो या जो है सिंगर्स हो या फिर जो है लिरिसिस्ट हो या म्यूजिशियंस हो, उनके बारे में बातें करते हैं और जो है उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स आप तक पहुंचाते हैं, है ना दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही उम्दा, ना केवल वो बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि एक बहुत ही उम्दा गायक कलाकार यानी कि गायिका भी थी और बेहद खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली एक ऐसे अदाकारा जो वैसे तो फिल्म काफी उन्होंने कम किए लेकिन जितने भी किए थे सुपर डुपर हिट रही। एंड शी इज नन अदर देन सुलक्षणा पंडित। जी हाँ दोस्तों, सुलक्षणा पंडित ना केवल एक अदाकारा थी बल्कि एक बेहतरीन गायक कलाकार थी। एक्चुअली वो बनना तो चाहती थी एक गायिका, मशहूर गायिका, और उनकी आवाज जो है दोस्तों बिल्कुल लता मंगेशकर से मैचिंग भी काफी करती है, लेकिन कुछ फिल्म जगत के जो है साजिश के कारण जो है फिल्मी जगत में उन्हें इतनी जो है गायिका के रूप में जो है सफलता नहीं मिली जितनी कि उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करके। तो बातें करेंगे और भी उनके, लेकिन हो जाए सबसे पहले एक गीत उनके फिल्मों से।

0: दोस्तों सुलक्षणा पंडित ने 1967 में आई फिल्म तकदीर से उन्होंने अपनी पार्श्व गायिका के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। उनका गाना जो था आज भी बहुत फेमस है, सात समुंदर पार से। जी हाँ, उस गीत को उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाई थी और ये सुपर डुपर हिट रहा ये फिल्म। उन्होंने हिंदी फिल्म के अलावा जो है मराठी, बंगाली और गुजराती भाषाओं में भी कई गाने गाए। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध गानों में से है मौसम मौसम लवली मौसम, बेकरार दिल और तू सागर है जैसे सॉन्ग्स है। 1976 में फिल्म संकल्प के लिए गीत तू ही सागर है तू ही किनारा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बातें करेंगे और भी, लेकिन हो जाए एक और गीत। जी हाँ दोस्तों, उनके फिल्म से
1: नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब

दोस्तों, सुलक्षणा पंडित ने बतौर एक्ट्रेस 1975 में फिल्म उलझन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने लगभग 25 से अधिक फिल्मों में काम किया और उस दौर के सभी बड़े सुपरस्टार्स जैसे राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी प्रमुख फिल्मों में हेरा फेरी, अपनापन, खानदान और वक्त की दीवार जैसे सफल फिल्में शामिल हैं। जी हाँ, इनका जो है कहते हैं कि अभिनेता संजीव कुमार से ये बेहद प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार एक तो हेमा मालिनी से प्यार करते थे और दूसरा टुकराए जाने के बाद उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरे लाइफ में, हमारे परिवार में 50 के पार कोई भी पुरुष जो है जीता नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता। और वाकई में हुआ भी यही, क्योंकि 50 की उम्र पार करने से पहले ही जो है संजीव कुमार हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं और जो है सुलक्षणा पंडित का एक तरफा प्यार कहीं प्यार में ही गुम हो जाता है। बातें करेंगे और भी दोस्तों, एक और प्यार भरा गीत आप सभी के लिए हो जाए, एंजॉय कीजिए।

जी हाँ दोस्तों, संजीव कुमार की असमय मृत्यु के कारण और अपनी मां के निधन के बाद सुलक्षणा पंडित गहरे सदमे में चली गई। उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और जीवन के अंतिम वर्षों में वो आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती रही। अपनी छोटी बहन विजेता पंडित के घर गुमनामी की जिंदगी जीती रही। 71 वर्ष की आयु में 6 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया और एक बहुत ही उभरता हुआ जो है फिल्मी दुनिया का सितारा जो है कहीं ना कहीं डूब गया। तो चलिए उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आखिरी नगमा आप सभी के लिए पेशे खिदमत है। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे जो है आज के कलाकार का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: si akasbani itan rapoku ma hilporga alochem ni gola lok ngana nya orunga kene baje reme tan melem ala mele surunga nishi am ar monji gema targe de tacho ba surunga si pem ta pa chore jab jere shi ndarma akum herre pu babla yajali ne hiri gola any kilometer gobake lela ki panyor district welcome gate dok di ok el stone crusher plant menam lo kudu kamri ne lever ni dum ep gde ne atiga camp menam lo yubla karne hab di dira chek chek ten chinya pukun ma khabl men pato ok yidne tayam no sok di dira chek chek nam de ham alaba chemuk yoma gak dukunama ok sok di dira chek ni gte ne chek ten jinam ga puishala agom ham murum ya response team gde ga lok tapa pukunama ok sok ra chek chek gda lo mobile network go do ma ga greek la so stone crusher plant lo goba juglikok gari gora nam te milu ham ra chek chek tum chingam chita pukunama ham men pa tha to ok lever megnam rachek chiklum nyanam kham so response team gdinga intimate lo lever agent gdha selensa nyap kum ok medical team akin go papumpare district im cham ga grikla ndrf medical ok response team gdha la ambulance gari kham doctor atul commandant medical ye ing lik la sirg ribaje hok sok didira chek chek gda laga ba inde bhik ba kham ne patha to ok sok un tar gana lebar mulu asam state lok ok sok un tar gad ba monam gud ug alo gud kham dik ta ke mu rik la dumpo lochin un tar gad ba mujin ap kum kham ne patha to ki panyor district lower panyor hydroelectric project kham nefko ga reg kunam kham sok hilpol ga alo chem ni gola lup nan ho sibik dus bilik jik na nidum ep go ba bibeli kle ing kunam kham ndrf team gud kha shilo alo lum na ba sirga kana ba je ham chuminit go ba re lok makab ka ji se mar bur gap kum kham la mem pa tom ok NDRF ni chemni gula om goba rebam dokula soka sibi isinga bibela ing kunam gudham soji godo ba mapa mabe jik dukunama ok nepko koloni lo sibi isiga kufuna bangluk jinam mulukham local ni gud la ex servicemen ok foolish ni gud kha leken goba rebam la soka kupana gudham jopak jila retormentor nyaga dukunama khala mempa tato ओक्सो कॉलोनी ग बिकेबी स्कूल लो निदुम चांग को वाला एनी गते ने दोसो दाक्षो मोक दुकुना बखम ला डिस्ट्रिक्ट डिस्टास्टार मैनेजमेंट टीम ग लो कपुय जापा जिप कुम ओक मोर ग है अलखो जीरो ला पिता फुल ग दा लो क निदुम चेंप ग दने ला नेपको बिकेबी स्कूल लो शाकोरी रिन ग सितो शिमा ग द हमला ग ग निगा हमला अब ओक होमे आ एनी ग हम नाहोर लागन लो बागल जिप कुम हमला civil aviation department ha japa jip kuma ok kukuso buga situ shima ham asam gua purga palijan ba pap kuma ok cancer atm chine home nima ako civil isiga bir lo untar gadaba mota kunam ham helicopter ba morga hai alhor nahar laun ga tomo riba institute of medical science trims lo bagluk jita pukunama ok sok tayo lo nidum chumum gola any ni goba gren harren lukma ba domestic tourist ni gde ne helicopter sum go airports ga lok la civil aviation department lok na horlom lo bagli ta pukur me khabl me pata to no shinchi pu shi ma kasbane tanu pukum lok thal to nya to अरुणाचल प्रदेश स्थित लोक नीत ब राज्यसभा एम पी ब हुरले कुनम नर ताई तागा ग मुर्ग है आलहो नीत ने दिल्ली ग पार्लियामेंट नाम लो राज्यसभा एम पी ग लगा ब कोसम क्वाहम दोगे कुबा ओक ब ग कोसम क्वाहम राज्यसभा ग चेयरमैन सीपी राधा कृष्णन ये दम पुकुरम हम नेम पा दो ओक अंदर में ताई तागा ग होमे अन्य हो लेवर कुदो का मेरी नि ब रिग रिग ला कुक सो स्कूल शार ब शिप कुम ओक ब ये 1996 अन्य हो बीजेपी लो अलग ग्रीक ला स्टेट लो बीजेपी ग सरकार है आमातित्य ग इंचो लो अरुणाचल प्रदेश स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट ब शिप कुन में ok nerma tagag ya soka ot taking me nam ham to jek danam ga kuk lo bharat ga vice president bala rajesh abha ga chairman ba sig nam kar tare khisi kin me kham ne pata do sirga kene ba je ham chempu la ang minit go ba ri lo ka posa guda pele lo ka raju hute lo go ba gari gora nam te ham didira chek chek tum jinam ham hapko jirev ga grik la putin pele lo moko jit tak dukunam ok sirgo ba putin la hoje pini ga penko lo ka gari gora nam te ham moko jila ma ba jip kumam hama ba putin la kimin pini ga penko lo gari gora sonye soche ne gudne jugla doko ba hapko jip kuma khamla iste disaster management department ha japa pukuna ba khamla mempato ok nepko koloni lo gudirra cheg ha kai alaba chiklik jinam lega ba posa la putin vini ga penko lokam sojgo da ba hapko jila mag dukuna ma ok sirgol ka gari ham jugla modoko ba hojla sagali vini ga penko lokam nam te ham hapko jita pukuna ba khamla mempato
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निशि समाचार। अगर आप हमारे निशि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही जी हाँ दोस्तों डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर, यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों वक्त हो चला है वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम का और इसे आप सभी के लिए पेश करने वाली है जुलेखा टोपी वाला।
2: नमस्ते लिसनर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज वी हैव कम टूगेदर फॉर अनदर एडिशन ऑफ आवर वीकेंड स्पेशल मैगजीन शो। आई एम योर होस्ट जुलेखा टोपी वाला।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जुलेखा टोपीवाला के साथ वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से। जी हाँ, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Attention, Pare Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों का। जिंदगी गुजार है दोस्तों, यूं तो हर पल एक बदलाव है, कभी सहज तो कभी जबरन, कभी खुशनुमा तो कभी गमगीन, मगर फितरत इंसान की कुछ ऐसी होती है कि पतझर में भी बाहर की हसरत और पतझर में भी बाहर की याद और हर पल यूं ही बीत जाते हैं अधूरे से बेइत्मीनानी से, और इंसान भागता रहता है ताउम्र जाने कौन सी पल की चाहत में, ये भूल कर कि एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी खुशनुमापन होती है बंजर में भी।

0: दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, अब आप सभी को हम बता दें कि एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से अब आप सुन सकेंगे, जी हां दोस्तों, आप सभी का बेहद ही मन पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि हेलो फरमाइश। अब से बस कुछ ही देर में बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी, हमारा जाना पहचाना नियमित श्रोता लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी सर जी, कैसे हालचाल है सर? बारिश कैसी है सर आपके उधर?
1: हाँ जी, बारिश तो जोरदार हो रही थी कल तक।
2: बिल्कुल सर जी, इधर भी अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो चुका है मध्य प्रदेश में भी।
1: ओके।
2: अभी दो दिन से यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। जो किसान भाई है उनके लिए, ये जो उज्जैन जिला है, जो उज्जैन बेल्ट है, आसपास जिले में अच्छी बारिश हुई है और किसानों के चेहरे पे भी थोड़ी चमक आ गई है, क्योंकि जो बोवनी करने के लिए जो तो पर्याप्त तो बारिश होती है वो अब हो चुकी है सर इस तरफ।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया खबर है ये तो
2: सर जी। वो बारिश तो जैसे कि हर व्यक्ति इंतजार करता है गर्मी के बाद में बारिश आने का।
1: जी जी।
2: और अब जब इससे बारिश का दौर आ रहा है तो अब धीरे धीरे अपने को पौधारोपण भी करना चाहिए, कहीं आपके आसपास बगीचा हो या जहां आपका खेत हो, क्योंकि ये जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो परिवर्तन होता जा रहा है,
1: जी जी जी,
2: इसके अंदर पेड़ों की कटाई हो रही है, उसकी वजह से ये सब ये डिस्टर्बेंस हो रहा है मौसम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम में बदलाव इसी के कारण आ रहा है।
2: जी जी जी सर जी, तो सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास एक एक पौधे का रोपण जरूर करें और उसकी देखभाल भी करें।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी।
2: हरा भरा देश रहेगा बिल्कुल, और बारिश का ये जो गर्मी है ये थोड़ा कम होगी, बारिश भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे संदेश दिए आपने लोकेंद्र जी। तो इस संदेश के साथ अब कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे अपने दोस्तों को?
2: गाना सर सुनना है, फिल्म का नाम है पेंटर बाबू, और पेंटर बाबू का एक गीत है, ओ मेरे सजन बरसात में।
1: ओहो, बरसात के मौसम में बरसात का गीत।
2: जी बिल्कुल, बरसात के मौसम में बरसात के गीत बहुत सुंदर लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिमझिम बरसता हुआ बारिश और सामने रेडियो पे बारिश का गीत, क्या बात है।
2: बारिश का गीत बहुत सुंदर लगता है सर।
1: जी बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल।
2: ये आज हम हमारे मित्रों के साथ में जो जुड़ेंगे, भगवान सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं और सुनील झा जी है, राम बाबू मालवी जी है, योगेश जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, करणवीर पॉल जी हैं, गौतम राय बोले जी हैं, धीरज रबारी है और अफजल भाई है, धीरज भाई हैं, ये सभी मित्र हैं हमारे। और हमारे ग्रुप है हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, उन सभी के लिए और आकाशवाणी ईटानगर के लिए के ओ मेरे सजन बरसात में।
1: ओके, बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है, तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी।
2: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: जी जी सर, थैंक यू।
0: जी
1: सर, वहाँ का मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, यहाँ आज तो थोड़ा थोड़ा धूप खिला हुआ है, कल तक तो बहुत ही जोरदार बारिश हुआ था।
1: वहाँ बहुत गर्म रहा है।
0: अच्छा जी,
1: अभी पेड़ के पास बैठ रहा हूँ और आप लोगों को डायल किया तो मिल गया।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर के पास ही है पेड़?
1: सर, घर के पास ही है।
0: अच्छा अच्छा, पास ही है पेड़ ना, घना बड़ा।
1: और आप लोगों का जो आवाजें है ना, इतना मीठा है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आकाशवाणी ईटानगर का सभी प्रोग्राम सुनने में अच्छा लगता है।
0: ओके जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए।
1: जी जी सर, मैं विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोहपुर असम से बोल रहा हूँ, हरद्वारा।
0: हरद्वारा, जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: सर, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में आए हो मेरी जिंदगी में, ये गीत सुना दीजिएगा।
0: आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, जी बहुत ही बढ़िया गीत है, जरूर सुनाएंगे।
1: जी जी सर।
0: और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: और सर, ये गीत को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ पहले आपको।
0: जी धन्यवाद।
1: और भाईकन मुंडा, अमल बसुमतारी, रमेश पात्र, विमल बसुमतारी, दिनेश शर्मा, नीलोत्पल दोरा, देवदत्त और हेलो फरमाइश से जुड़े रहे सभी श्रोताओं के लिए मैं गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरत जी, आपके वहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो क्लियर सुनाई देता है?
1: हाँ हाँ, यहाँ क्लियर सुना दीजिए।
0: ओके, आप FM में सुनते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर में, कौन सा चैनल में सुनते हैं?
1: यहाँ मीडियम वेब पे चलती है ये।
0: अच्छा अच्छा, मीडियम वेब पे आप सुनते हैं ना।
1: माने आप लोगों का जो आवाजें है वो बहुत अच्छे से आते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा जान करके।
1: शिकायत नहीं दिया है।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी, हाँ जी। तो हरत जी, ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से।
1: जी जी सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश आनी वागरा साहब, सादर प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार हमारी ओर से भी आपको।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर पर। मानवर आप कैसे हैं, वहाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत ही गर्म हो रहा है, एक दो दिन पहले झमाझम बारिश हुई थी लेकिन तापमान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं हैं और तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास।
0: ओके, मौसम की जानकारी तो मिल गई आपके वहाँ का। अब मैं अपने यहाँ का बताता हूँ आपको। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और यहाँ कल तक तो बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी।
1: जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे वार्तालाप होती है ईटानगर में। और हम काफी देर से प्रतीक्षारत थे लेकिन लोकेंद्र वर्मा जी ने कहा कि थोड़ा सा रुको रुको रुको, इसके बाद लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ लगाओ, तो मैंने डायल किया और दो तीन मिनट में फोन लग गया और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। और आपकी जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, खिलखिलाहट है, उसे सुनकर हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है। जी जी, धन्यवाद। और साथ ही लोकेंद्र वर्मा जी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा सभी को बताते हैं कब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और कब रिकॉर्डिंग होगी।
1: और जब आपकी मेहनत से, इतनी लगन से, परिश्रम से समर्पित भाव हम तैयार करते हैं हम श्रोताओं के लिए और प्रस्तुत करते हैं, किसी भी श्रोता को आप निराश नहीं करते, सबको बराबर अमृत करते हैं, ये बड़ी काबिले तारीफ है आपकी और मैं इसी का तो फैन हो चुका हूँ आपका।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोशिश करता हूँ कि सभी की फरमाइश पूरी कर सकूँ और इसी में लगा रहता हूँ। और आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, मैं बराबर प्रोग्राम बनाता रहूंगा।
1: जी जी, आपका यही तो अपनापन स्नेह हमें आकाशवाणी ईटानगर की आकर्षित करता है। एक चुंबकीय आकर्षण से हम खींचे चले आते हैं आपकी ओर।
0: क्या बात है,
1: खुशी और प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है खान।

0: दान और गीत के बोल हैं, नील गगन में उड़ते बादल आ आ, आ, बस बादल आ जाए, झमाझम बारिश हो जाए, यही कामना करता हूँ
1: जी। नील गगन पे बादल जल्दी आ जाए और आपके वहाँ झमाझम बारिश हो जी। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: जी सर्वप्रथम याद करता हूँ आरुणी वाघरा साहब को, साथ में है ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेंद्र वर्मा है और तेज चंद्र अग्रवाल है, राजू यादव है, राकेश कुमार जी है, पूरन वर्मा है, पुरुषोत्तम जी है, पुष्कर नाथ जी हैं, केशव प्रसाद शर्मा, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से सुन रहे सभी सम्मानित श्रोताओं के सादर समर्पित करता हूँ बागरा साहब के साथ में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी हृदय धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके और आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: बताया।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो सर।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी सर, हम धेमाजी असम जुनाई मिसाकिर पुरा बिमल बसुमतारी कोई आसे सर।
1: बिमल बसुमतारी जी, कोल कोड़ा कारण बहुत बहुत धन्यवाद। कैने को आसे अपनी?
2: हाँ सर, आज भले आसे, रोड दी आसे आज सर।
1: अच्छा, आज रोड दी आसे ना, आमार यातो रोड दी आसे। और आमार अरुणाचलते हुआ घटना तो अपनी हुनी से की जानी?
2: हाँ सर, अभी न्यूजते पाई आसो, मोबाइल पे देखी आसो, बेया लागी से देखी पिने बहुत
1: ফাইকুন
2: মুন্ডা, অমল বসুমতারী, রমেশ পাত্র, টিকারী রংপার, আর অনসুলা বসুমতারী, সুনিতা বসুমতারী, হিতেন্দ্র দাস, আর যোগেন্দ্র রংপি, দিবাশী হাজরিকা, আর আছে রমেশ প্রজাপতি, রমেশ পাত্র, গোল্ডি, রাকেশ, ভগবান সিং পরমার, অবিনাশ, আর বহুত আছে আমার।
1: আচ্ছা,
2: সবকু মই নামটো লব নোৱাৰে।
1: হয় হয় হয়,
2: সবকু মই দিছো আৰু।
1: ওকে ওকে, সবকে আপুনি শুনাব খুজি?
2: হয় হয়, লগতে আপোনাকো আৰু।
1: ওকে, থ্যাংক ইউ, ময়ো শুনিম। ओके, तो बिमल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना अनारी फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से आपका मित्र दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ जी।
0: जी दिलीप जी, आप कैसे हो बताइए।
1: बहुत ही अच्छा हूँ, लंबे अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है सर।
0: जी जी जी सही कहा आपने। और कहिए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी।
1: मौसम तो बड़ा ही खुश मिजाज हो रहा है, बरसात का इंतजार है।
0: अच्छा, बारिश
1: उमस
0: हुई नहीं अभी
1: बहुत
0: तक।
1: हो गई है।
0: अच्छा, हुई नहीं बारिश अभी तक।
1: बारिश दो बार हुई थी, हल्की हल्की रोड को छिटकाव करके चली गई है।
0: जी जी जी जी यही दुआ करते हैं कि जल्दी आपके वहाँ पे झमाझम बारिश हो ताकि गर्मी से आपको, उमस से आपको राहत मिले।
1: जी
0: जी तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में।
1: सर, आज धर्मवीर मूवी से गाना याद आ रहा है, सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी।
0: ओके जी, बहुत ही बढ़िया गीत, और काफी दिनों के बाद मैं भी सुनूंगा इस गीत को।
1: जी सर,
0: जी और
1: अच्छा
0: किन लोग।
1: लगता है ये
0: जी
1: गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे आप इस गीत को दिलीप जी।
1: सर इसको 3 जने हम सुनेंगे,
0: अच्छा
1: चाय की चुस्कियों के साथ में, शाम को 7:35 पर, ईटानगर, आकाशवाणी सुनने वाले सभी तमाम साथी भाई बहन।
0: ओके जी जी जी सभी को इस गीत को सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं
1: धन्यवाद
0: आपके
1: सर,
0: पसंद का गाना धर्मवीर फिल्म से।
1: नाइस टू मीट यू सर।
0: थैंक यू, नाइस टू मीट यू टू।

0: तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। हर छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाहन छोड़ी। हो
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो
1: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
2: हाँ हेलो सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सर, आपने मेरी कॉल को रिसीव किया। एक साल से ट्राई कर रहा हूँ जी।
1: एक साल से?
2: हाँ जी।
1: क्या बात है, और आज पहली बार लगा आपका कॉल?
2: हाँ जी नहीं, दूसरी बार लगा।
1: अच्छा अच्छा, दूसरी बार, चलिए कोई बात नहीं, आज लगा तो सही।
2: जी। और ये सर कैसे आप?
1: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
2: जी।
1: और आपका परिचय हो जाए।
2: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ।
1: ओके सोनू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
2: यहाँ पे जी मौसम जो है ना थोड़ा सुहावना हुआ पड़ा है।
1: अच्छा जी।
2: हाँ जी कल बारिश हुई थी पंजाब में।
1: ओके क्या बात है जी।
2: हाँ कल बारिश हुई थी तो आज मौसम सुहावना हुआ है और गर्मी से राहत मिली आज।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, और आगे भी बारिश होने के
2: समय? ईटानगर में कैसा मौसम है
1: जी? हमारे यहाँ तो लगातार एक महीने से बारिश हो रही थी।
2: हाँ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत हरा भरा शहर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा बारिश होती है ना, इसलिए यहाँ का जो मौसम है बढ़िया है।
2: हाँ जी हाँ जी, मैं देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी, कभी आइएगा अरुणाचल प्रदेश, हम आपको घुमाएंगे यहाँ की खूबसूरत वादियों में।
2: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आवाज के माध्यम से आप तक हम पहुँच गए हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: जी सर।
1: तो सोनू जी बात करके बहुत ही अच्छा लगा, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुना है?
2: सर जी मैं गीत सुनना है बेवफा मूवी का।
1: ओके बेवफा मूवी का कौन सा गाना?
2: उसमें गुलाम अली साहब जी की आवाज में गाना है।
1: अच्छा।
2: इश्क में हर चीज बिक जाती है,
1: ओहो
2: मेरी याद याद याद आती है।
1: क्या बात है, सुनते हैं आपके पसंद का गाना आपके साथ। और किन लोगों को आप?
2: दोस्तों का नाम लूँ?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
2: हमारे जो बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं जी, हमारे जलंधर से पॉल जी हैं, और लोकिंदर वर्मा जी हैं, और रजिंद्र गंगवार जी हैं बरेली से, और सुनील झा जी हैं, और गौतम राय भोले जी हैं, और तुकाराम यादव जी हैं।
1: ओके इन सभी के
2: हमारे दोस्त हैं, इनको डेडिकेट करना है गाना ये।
1: ओके इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं इस गीत को? तो सोनू जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का।
2: धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करता हूँ।
1: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार,
1: मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप बताइए?
1: ठीक है जी, प्रभु की कृपा है। आप कैसे हैं आप बताइए
0: जी? हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा है, हम भी बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: चलो जी, हम तो दुआ करते हैं आप ऐसे अच्छे रहे और हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम और अच्छे अच्छे गीत सुनाते।
0: जी जी जी जी, कोशिश जारी रहेगी जब तक जा है जी। और आपके वहाँ का मौसम के बारे में बताइए, कैसा है मिजाज?
1: जी मौसम तो आजकल पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी गर्मी हो जाता है, कभी जो है मौसम बिगड़ जाता है, कभी बूंदाबांदी होने लगती है।
0: ओके,
1: तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है।
0: जोरदार बारिश अभी तक हुई नहीं आपके वहाँ?
1: नहीं, जोरदार बारिश नहीं हुई।
0: अच्छा,
1: कभी कभी बादल आते हैं काले, अचानक एकदम गरजते हैं फिर चले जाते हैं, बूंदाबांदी होती है बस।
0: अच्छा
1: जी जी, यहाँ तो बस दिल्ली NCR में एक तो प्रदूषण बहुत है यहाँ पे।
0: ओके जी,
1: हाँ जी, इसलिए बहुत परेशानी होता है ट्रैफिक में भी, इधर उधर घरों में भी।
0: तो बारिश अगर हो जाए तो थोड़ी राहत मिलेगी आपको गर्मी से?
1: जी पूरी उम्मीद है, ऊपर वाले पर भरोसा है, जरूर बारिश होगी।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी आशा के साथ कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: जी फिल्म का नाम है प्यारी प्यार, टाइटल सॉन्ग है देखा है तेरी आंखों में प्यारी प्यार।
0: ओके जी, और किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी हमारे दोस्त हैं ये, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, सुनील झा जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, और हमारे हेमंत जी हैं जो संगीत से जुड़े रहते हैं।
0: ओके,
1: और हमारे विनय जी हैं जो गेरा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये सभी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी।
0: अच्छा जी जी जी,
1: सभी के लिए मैं गीत डेडिकेट करता
0: हूँ। ओके, तो मनोहर लाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं शेख जफर हसन, क्वाद जिला रोहतास, बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी शेख हसन साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे है आपका मिजाज?
1: मिजाज अच्छे है।
0: अच्छा
1: जी, सब लोग भी अच्छे है।
0: जी जी जी बिल्कुल। मौसम कैसा है?
1: मौसम का तो मत कहिए, पूरा जून आखिरी जा रहा है, कुछ होगा, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। और जहाँ तक गर्मी की बात है, 40 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ मर पड़ रहा है।
0: जी,
1: ऐसे
0: जी,
1: तो उत्तरी बिहार में इससे भी ज्यादा है, 40-42-43 तक है, ये हालत है
0: जी। भीषण गर्मी पड़ रही है
1: जी। डॉक्टर, नहीं सुना था कि आपके असम में, आपके वहाँ भी बहुत बारिश हुई है?
0: जी
1: है
0: जी जी जी, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है एक महीने
1: जी, बहुत बारिश।
0: तो यही उम्मीद करते कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, आपके वहाँ चले जाए, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा राहत मिले। जी बिल्कुल
1: जी, कितना अच्छा बोल रहे हैं सर, बहुत पसंद हमको है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: अंदाज बहुत अच्छा, गाँव से बात करने का जो अंदाज है
0: जी,
1: थोड़ा खुशी की जहाँ बात है, बहुत इत्मीनान से और अच्छे से आप बात कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। इसलिए आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपका तो नाम भूल गए, मैं दोबारा याद करा दीजिए।
0: जी जी जरूर। मेरा नाम बोके बागरा।
1: हाँ हाँ, बोके बागरा।
0: जी जी हाँ जी
1: जी जी, अब भुलाएंगे नहीं, बोके बागरा।
0: जी जी, चलिए अगर भूल भी जाते हैं तो मैं फिर से याद दिला दूंगा, कोई बात नहीं।
1: बोके बागरा जी जी, अब तो हमारे समझ से 8 साल से आपको हम सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है। जी जी जी जी, ओके, बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। तुझे एक शेर सुनिए, गौर कीजिए।
0: जी जरूर।
1: बदनाम क्यों करते हो तुम इश्क को ऐ दुनिया वालों, बदनाम क्यों करते हो तुम इश्क को ऐ दुनिया वालों, मोहब्बत तुम्हारा बेवफा है तो इश्क का क्या कसूर।
0: इश्क का क्या कसूर, वाह वाह वाह। जी बहुत ही बढ़िया।
1: और आखिरी शेर
0: जी।
1: जिंदगी कम है मुस्कुराते रहो, जब तक दम है मुस्कुराते रहो, सबसे हालात ना करो जाहिर, गर कोई गम है मुस्कुराते रहो।
0: वाह वाह वाह वाह, गम में भी मुस्कुराते रहें, वही है विजेता। जी जी,
1: किसी को पता नहीं चले
0: जी,
1: जो हम बाजार भी करते हैं, बहुत सारे दोस्त है गम, लेकिन हम अगर मुस्कुराए तो उससे जाहिर नहीं होगा कि ये गम में है।
0: जी जी जी जी,
1: बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए,
0: क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने
1: जी।
0: तो गाने के बारे में बताइए, कौन सा आप सुनना चाहेंगे?
1: अगर है तो इसको रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए सर।
0: ओके जी जी, ठीक है, मैं आपको जरूर।
1: दूध का कर्ज,
0: दूध का कर्ज का गाना आप सुनना चाहेंगे? ओके जी।

प्यास लगी है, आगे लगी है, प्यास लगी है, आगे लगी है, बरसा है।

0: क्या बात, क्या बात, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने गाया शेख साहब
1: जी सर, कहीं भी सर मिस्टर कॉल लगता है आपको बता देता चल रहा हूँ
0: जी जी
1: कि वहाँ अनौसर भी होते हैं, कहीं मैडम भी होती है, तो वो सारे लोग पहचान के बहुत दिनों से कॉल में लगा रहा सालों।
0: ओके,
1: तो मौका शेर भी सुनाता हूँ, एक पहचान है, और दो लाइन गाना भी गा लेता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
1: तो दोस्त को याद कर लूँ?
0: जरूर जरूर जी जी।
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अष्टपुरा मऊ के उस्मान अली अंसारी, गणेश दास बंगाली और अनवर बिहारी, ये चारों श्रोता जो हैं
0: जी
1: आप पूरे हिंदुस्तान में कॉल लगाते हैं।
0: अच्छा जी जी जी
1: जी आओ मैं भी।
0: ओके, क्या बात है। जी, तो शेख साहब कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके।

0: दोस्तों, आप सब आनंद उठा रहे थे आप सभी का बेहद ही मन पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ। जी हाँ दोस्तों, और इसे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा था FM बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखे, 28 जून 2026 रविवार, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों, फिल्म इश्क ज़ारे के इस गीत के साथ ही हमारी आज के हिंदी फिल्मी गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में यानी कि रात्रि के ठीक 8:30 का वक्त रहेगा फ्रेंड्स वेस्टर्न मेलोडीज का। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज के साथ, और इसे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी

0: कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, रात्रि के ठीक 9 बज चुके हैं और रात्रि के ठीक 9 बजते ही वक्त हो जाता है हमारे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट का, लेकिन हम आप सभी के लिए इसे प्ले करेंगे एक छोटी सी हैंड सैनिटाइजर ब्रेक के बाद। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अरुणाचल वासियों कृपया ध्यान दें, 28 जून 2026 को यानी रविवार यानी संडे के दिन इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। भारत 14 सालों से भी अधिक वर्षों से पोलियो मुक्त है और यूं ही पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए हर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन देकर पोलियो वायरस से उनकी रक्षा करना है। इस बार पूरे राज्य में आपकी सुविधा के लिए 3,170 से भी अधिक पोलियो बूथ लगाए गए हैं। तो आप अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाएं और 5 साल तक के अपने सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं। दिन याद रखें, 28 जून 2026 रविवार, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा चैनल यानी कि एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज को यानी कि अरुण एफएम को, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। जी हां दोस्तों, और आप सभी का मन पसंदीदा शो यानी कि भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट, जहां हर गीत दिल की धड़कनों से जुड़ जाता है ना। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। आज का गीत भी इस सेगमेंट का जो पहला गीत है, बहुत ही प्यार भरा और दिल की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। जी हाँ, और ये जो गीत है एक खास जगह दिल में बनाता है और प्यार और इंतजार की इस खूबसूरती की भावना को जो है बयां करता हुआ गीत जो है आप सभी के लिए पेश करते हैं हम करेंगे हम। और चलिए साथ साथ सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।
1: सारे गामा का

दोस्तों, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि वो एहसास है जो जुदाई के पल में भी और भी गहरा हो जाता है। जी हाँ, जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती है, तब शब्द ही हमारे दर्द और मोहब्बत को बयां करने का सहारा बनते हैं। जी हाँ, अब एक ऐसा गीत मैं पेशे खिदमत करने जा रही हूँ जिसमें दिल की तड़प, अधूरी चाहत और बिछड़ने का दर्द छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कभी ये शायरी रूठे हुए प्यार को मनाने का जरिया बनती है, तो कभी जुदाई के आंसुओं को शब्दों में डाल देती है। तो अगर आप भी कभी किसी को अपनी खास दिल की बात कहना चाहते हैं, तो ये सॉन्ग जरूर डेडिकेट कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके जज्बातों को खूबसूरती से बयां करेगी ये गीत, और यहाँ आपको दर्द भरी और रोमांटिक शायरी भी मिलेगी जो आपके प्यार और जुदाई के एहसास को और भी गहरा बना जरूर देगा। तो चलिए, बहुत ही प्यारा से गीत मैं आप सभी के लिए पेशे खिदमत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आने को है।

दोस्तों वो फिल्म आया सावन झूमके के इस बेहतरीन खूबसूरत नगमे के साथ ही हमारी आज की भूले बिसरे गीतों का ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं फ्रेंड्स कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। आप आनंद उठा रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि अरुण एफएम को, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। दोस्तों रफ्ता रफ्ता जिंदगी कुछ और चली, कुछ रास्ते में साथ चल दिए और कुछ यूं ही बिछड़ गए। वैसे दोस्तों हमारा भी आपके साथ कुछ पलों के लिए बिछड़ने का वक्त हो चला है। जी हाँ, हमारे सभा को संपन्न करने की वक्त आ चुकी है दोस्तों, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि हम बहुत जल्द, यानी कि कल सुबह के ठीक 5:48 पर आपके खिदमत में फिर हाजिर हो जाएंगे। हम साथ ही ये भी उम्मीद रखते हैं दोस्तों हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही हम उम्मीद रखते हैं कि कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और यूं ही अरुण एफएम को सुनते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों याद रखिएगा कि खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। और इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए संचार निष्पादक टी तांजा, तकनीकी अभियंता पीबी देवरी तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपना को रुखसत होने की दीजिए इजाजत और साथ ही में आगे बने रहे एफएम गोल्ड चैनल पर। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पैनिश भाषा में मित्रता होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान उनका समापन किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister

0: वायुसेना के दो विमानों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित तीन महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उपविदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचावकर्मी मलबे में लोगों की जान बचाने के लिए खोज अभियान तेजी से चला रहे हैं। कल 7.2 तीव्रता के भूकंप के कुछ ही सेकंड बाद एक और शक्तिशाली 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों भूकंप ऊपरी सतह के नजदीक थे। देश की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा की है।
2: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा है कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और राहत कार्यों में भारत के सहयोग की इच्छा जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के दो विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इसमें दो भीष्म क्यूब भी शामिल है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्री स्तरीय बैठक में अपने रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान के साथ कूटनीति, सीरिया और लबनान में स्थिरता तथा गजा में पुनर्निर्माण प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। ओमान के पास एक वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अपने जलमार्ग सुरक्षा अभियान को रोक दिया है। इस हमले से ईरान के साथ हुए प्रारंभिक युद्ध विराम की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। वहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC नौसेना ने आज कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को हॉर्मूज जलडमरू मध्य को पार करने के लिए ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार IRGC ने कहा है कि निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग